मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भगवान के चरणों में परम अनुराग ही भक्ति है, अर्थात भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना यही मुक्ति का साधन है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे प्रभु दान दो, ऐसा वरदान दो, मन में भक्ति की दीपक जलाते रहें। एक यही आस है, जब तक श्वास है तो हितों की तराने हम गाते रहें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे सुधा रंजीत, मुकेश, अनूप चरूटा और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार।
1: मन में सींचो हर हर नाम, अंदर कीर्तन हर गुणगान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभु जानो तेरे।

0: कहो नानक जाका निर्मल भाग, हर बैरागी ताका मन लाग। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह को आज भी एक बहादुर योद्धा के रूप में याद करते हैं। उनकी बहादुरी, गरिमा, मानवता और मृत्यु के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। गुरु तेग बहादुर का जन्म 18 अप्रैल 1621 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे हरगोविंद साहब के सबसे छोटे पुत्र थे। सिख समुदाय में आज भी गुरु तेग बहादुर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बचपन से ही उदार चित्त, बहादुर, विचारवान स्वभाव के थे। गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब के बीच संघर्ष का किस्सा आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए काफी दबाव बनाया था। इसके लिए उन्हें काफी यातनाएं भी दी गई थीं, लेकिन वे उसके सामने बिल्कुल नहीं झुके और अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। आपने समाज के कल्याण के लिए, आर्थिक और आध्यात्मिक उद्धार के लिए बहुत रचनात्मक कार्य किए। उनके विचार थे, जिनके लिए प्रशंसा और विवाद समान हैं, जिन पर लालच और लगाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर विचार करें, केवल प्रबुद्ध है जिसे दर्द और खुशी में प्रवेश नहीं होता है, जो अपने अहंकार को जीतता है और सभी चीजों के एकमात्र द्वार के रूप में भगवान को देखता है, उस व्यक्ति ने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया है, इसे असली सत्य के रूप में जानते हैं। किसी के द्वारा प्रगाढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शक्ति देता है और किसी से प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। आध्यात्मिक मार्ग पर दो सबसे कठिन परीक्षण हैं, सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य और जो सामने आए उससे निराश ना होने का साहस। अपने सिर को छोड़ दो, लेकिन उन लोगों को त्यागें जिन्हें आपने संरक्षित करने के लिए किया है। अपना जीवन दो, लेकिन अपना विश्वास छोड़ दो। इस भौतिक संसार की वास्तविक प्रकृति का सही एहसास इसके विनाशकारी क्षणिक और ब्रह्मपूर्ण पहलुओं को पीड़ित व्यक्ति पर सबसे अच्छा लगता है। हार और जीत यह आपकी सोच पर ही निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ये फैसला है कि डर से भी जरूरी कुछ है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। इनमें जो मायने रखता है वो है साहस। प्यार पर एक और बार और हमेशा एक और बार यकीन करने का साहस रखिए। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। एक सज्जन व्यक्ति वो है जो अनजाने में किसी को ठेस न पहुंचाए।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी पशु खाद प्रबंधन के विषय में विनय कुमार की वार्ता।

प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे दाद खाज खुजली के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। शीलो के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन। ग्यारह बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म निर्देशक राज खोसला के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं खेल और 12 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनी जा सकेगी आकांक्षा गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय होगा ओजोन परत संरक्षण और हम। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा सरफरोशी की तमन्ना। परवेज मेहंदी की इकाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। दिन में 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत सुनेगा खेल कूद स्वास्थ्य और फिटनेस के विषय में डॉक्टर अमित शर्मा से श्री अनिंदर सिंह की बातचीत।

हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे HPV जानकारी और बचाव के विषय में डॉक्टर शुभ्रा बंसल की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत, चर्चा का विषय होगा क्रांतिकारी विरासत, क्वेस्ट वर्ल्ड का विषय होगा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल, और हेल्थ प्लस में हम जानकारी देंगे वायरल संक्रमण के विषय में।

6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी कपास की फसल के कीट और उनके नियंत्रण के विषय में सुरेश चंद्र राजपूत की वार्ता। इससे कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ हम चर्चा कर बताएंगे कृषि निवेश पोर्टल के विषय में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मस्तों मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे हमारे बच्चे और खेलकूद और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा आजादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में डॉक्टर प्रभा शर्मा की वार्ता और आते 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शुभ्रा तलेगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वता एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीरामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की पाती में आइए आपको सुनवाते हैं पशु खाद्य प्रबंधन के विषय में विनय कुमार की वार्ता।
1: किसान भाइयों, पशुधन से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें तंदुरुस्त रखा जाए। तंदुरुस्त रखने के लिए ये जरूरी है कि पशुधन की अच्छी तरह से खिलाई पिलाई की जाए।

पशुधन की अच्छी तरह खिलाई पिलाई करने से मतलब है कि पशु को संतुलित आहार दिया जाए। संतुलित आहार का मतलब है कि पशु को 24 घंटे में दिए जाने वाले चारे दाने में उसकी आवश्यकता के सभी भोजन तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में हों, अर्थात किसी भी भोजन तत्व की अधिकता या कमी न हो। पशु को जिन भोजन तत्वों की जरूरत होती है वे प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन और पानी हैं। इनमें से पशु की खिलाई करते समय प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व पानी की पूर्ति करने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तत्व दुग्ध उत्पादन में विशेष महत्व रखते हैं और इनकी पूर्ति पशु को साधारण तौर पर दिए जाने वाले चारों से नहीं हो पाती है। अतः इनके लिए अलग से प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ जाती है। वसा और शर्करा की पूर्ति पशु को साधारण रूप से जो चारा दिया जाता है उसी से पूरी हो जाती है। अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है कि प्रोटीन की पूर्ति के लिए पशु को अच्छे किस्म का हरा चारा और दाने का मिश्रण दिया जाए। अच्छे किस्म के हरे चारों में दो दाल वाली फसल के चारे जैसे बरसीम, लोबिया, रिजका आते हैं, जो स्वादिष्ट होने के अलावा प्रोटीन भी पशु की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। यदि इन्हें पशु को भरपेट दिया जाए तो पशु को रात्रि देने की बहुत ही थोड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि यदि किसी दुधारू गाय भैंस को भरपेट बरसीम खिलाकर ही 6 किलोग्राम दूध लिया जा सकता है, अर्थात पशु से इतना दूध लेने के लिए अलग से रात्रि देने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि पशु को बरसीम जैसे अच्छी किस्म के चारे उपलब्ध नहीं है तो मक्का, जई, चरी, बाजरा आदि चारे दिए जा सकते हैं, लेकिन इन चारों को खिलाने के साथ ही साथ पशु को दाने का मिश्रण अवश्य खिलाना चाहिए, नहीं तो पशु से दुग्ध उत्पादन कम मिलेगा। रातम में पशु को घर में मिलने वाले पदार्थ जैसे जौ, गेहूं, जई, चना, बाजरा, मक्का, गेहूं की भूसी, चोकर, दालों की चूनी आदि को ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सरसों या मूंगफली की खली को बाजार से खरीदकर या घर की सरसों की पिराई के बाद प्राप्त खली का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर किसान भाई रातम में जौ तथा सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। यदि इनके साथ भूसी या चोकर या दालों की चुनी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए तो पशु से अधिक दूध प्राप्त करने में और आसानी हो जाती है। रातब बनाते समय ध्यान रखें कि 1 किलो रातम में लगभग 500 ग्राम जौ दले हुए, 350 ग्राम सरसों या मूंगफली की खली और 150 ग्राम गेहूं की भूसी या चोकर या दालों की चुनी मिलाई जाए। जौ की जगह गेहूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे जौ ज़्यादा अच्छा रहता है। साधारण पशुओं की खनिज लवण व विटामिन की जरूरत उन्हें दिए जाने वाले चारे दानों से पूरी हो जाती है। विटामिन की पूर्ति के लिए जब पशु को हरे चारे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हों तो अलग से बाजार से खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि हरे चारे नहीं खिलाए जा रहे हैं तो पशु को प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम विटामिन पूरक शेवी मिक्स या बीटा ब्लेंड देने की निहायत आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से पशु को रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है और उसका दुग्ध उत्पादन भी घट जाता है, क्योंकि विटामिन ए की काफी मात्रा दूध में जाती है, अर्थात पशु को दूध बनाने में आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन बी पशु खुद ही सूखे चारे जैसे भूसा से अपने शरीर में बना लेता है और विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन विटामिन ए और सी की पूर्ति के लिए पशु को हरा चारा मिलना बहुत जरूरी है। दुधारू पशु से अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसे खनिज लवण मिश्रण अलग से बाजार से खरीद कर रोजाना खिलाया जाए।

खनिज लवणों में मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फोरस पशु के दूध में रोज काफी मात्रा में निकल जाता है, अर्थात दूध बनाने के लिए इनकी काफी आवश्यकता होती है। इनकी कमी से पशु को दुग्धजर यानी परसून की बीमारी हो जाती है। अतः पशु को नित्य खनिज लवण मिश्रण जो बाजार में कई नामों से मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक रातव के साथ 50 ग्राम प्रतिदिन अवश्य खिलाएं। इसके अलावा पशु को दुग्ध उत्पादन के लिए स्वच्छ और ताजा पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध में 80% पानी ही होता है। पशु को प्रतिदिन 35 से 40 किलोग्राम पानी अवश्य पिलाना चाहिए। पानी जाड़े व बरसात के दिनों

0: कई नामों से मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक रातव के साथ 50 ग्राम प्रतिदिन अवश्य खिलाएं। इसके अलावा पशु को दुग्ध उत्पादन के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध में 80% पानी ही होता है। पशु को प्रतिदिन 35 से 40 किलोग्राम पानी अवश्य पिलाना चाहिए। पानी जाड़े व बरसात के दिनों में कम से कम 2 बार और गर्मियों में 3 बार अवश्य पिलाएं। बढ़िया तो यह है कि पशु के पास पानी की नाद भरी रखें, जिससे जब उसे ज़रूरत हो तब पानी पी सके। लेकिन कैसे भी दूध दुहने से आधा घंटे पहले पशु को पानी पिलाने की व्यवस्था अवश्य करें। उदाहरण के तौर पर अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए एक लगभग 500 किलो वजन वाली गाय या भैंस जो 10 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दे रही है को कम से कम 5 किलो गेहूं या जौ का भूसा, 25 से 30 किलोग्राम बरसीम या जई या लोबिया आदि का चारा और 5 किलोग्राम रातव और 500 ग्राम खनिज लवण मिश्रण अवश्य देना चाहिए। 5 किलोग्राम रातव में से 4 किलोग्राम रातव दूध के लिए और 1 किलोग्राम रातव पशु की सेहत के लिए देना पड़ता है, अर्थात पशु को 2.5 से 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम रातव देना चाहिए। एक और बात, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पशु को गर्भावस्था में अच्छी तरह से खिलाया जाए, अर्थात गर्भधारण करने के 6 महीने बाद से पशु को 1.5 से 2 किलोग्राम रातव अवश्य देना चाहिए। उसके साथ ही 50 ग्राम खनिज लवण मिला देना कभी न भूलें।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी पशु खाद्य प्रबंधन के विषय में विनय कुमार की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासि परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानां उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88,00,000 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24,000,000-2,000,000 अथ च 25,000,000-2,000,000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं दांत खाज खुजली के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता।
1: आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमज़ोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित न करना, तब ये इन्फेक्शंस हमें जल्दी पकड़ते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्रायः सिर में फंगल इन्फेक्शंस 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दांत में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो यह डायबिटीज़ या मधुमेह एवं HIV इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दांत से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोजे उतार के बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा, या मोजे जो हैं कॉटन सॉक्स पहने और हमेशा सूखे मोजे पहने, कभी नमी ना हो। आजकल इन दांत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाज या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दांत खाज या खुजली हो, तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज ना लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर स्टीरॉयड नामक औषधि होती है, जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बात इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है, और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दांत खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसका उपचार के लिए प्रयास करें।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी दांत खाज खुजली के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में गीत देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।
1: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार सरकार के

0: पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू SUV ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना।

0: साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वे 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम आसपास में होंगी कुछ दैनिक सूचनाएं, साथ ही हम जानकारी देंगे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में और सुन पाएंगे कुछ फिल्मी गीत। श्रोता, उत्तर प्रदेश फूड एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन 14 से 16 जून तक फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस में किया जाएगा। इसमें 150 से अधिक कंपनियां फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग तकनीकी, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग और इनोवेशन से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इस एक्सपो से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे और शहर के परंपरागत उत्पादों को भी एक्सपो में जगह मिलेगी। ये एक्सपो कंप्लीट फूड चेन, वेयर हाउसिंग, इनोवेशन और तकनीकी का एक संगम होगा। इस फूड एक्सपो में ODOC में चयनित आगरा की पेठा, दालमोठ, गचक, पराठा का प्रदर्शन किया जाएगा और फूड सेक्टर में आगरा में अत्यंत संभावना है। इस कॉन्क्लेव के आकर्षण होंगे केंद्र और प्रदेश सरकार, खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के विशेष सत्र होंगे। ODOC योजना का प्रदर्शन जिला उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। बैंकों द्वारा उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक योजनाओं, ऋण योजनाओं और अनुदान की जानकारी भी दी जाएगी। फूड सेक्टर में उत्कृष्ट काम करने वाली इकाइयों को सम्मानित भी किया जाएगा और इसके साथ साथ तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों द्वारा पैकेजिंग, मशीनरी, फूड सेल्फ लाइफ और नई तकनीकी पर मंथन किया जाएगा। तो हम आपको पुनः बता दें, इस एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन 14 से 16 जून तक फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस में किया जाएगा।

एक सूचना हमारे किसान भाइयों के लिए, अगर आप किसान हैं अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आपके पास 30 जून तक का समय है। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो आपको सम्मान निधि

का लाभ नहीं मिल पाएगा, जो उनके पास सख्ती के साथ इसे लागू कर दिया जाएगा। शिवपुरी जिले में लगभग 2,90,000 किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। अभी तक लगभग कुछ ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है, शेष को जून तक का ही मौका है। इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को कृषि विभाग के अलावा पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, विपणन और मंडी से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिला तहसील स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने का मौका दिया गया है, बावजूद इसके लगभग 18% किसान इससे वंचित रह गए हैं। ऐसे किसानों के लिए 20 दिन का एक और मौका है। किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराया जाना अनिवार्य है। जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उन्हें किसान सम्मान निधि के साथ ही अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम आपको पुनः बता दें, आपके पास अभी भी समय है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 30 जून तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें।

शुद्ध पावन पुरुषोत्तम ज्येष्ठ अधिक मास 15 जून को समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही पिछले एक महीने से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी समाप्त होने जा रहा है। पुरुषोत्तम मास के संपन्न होते ही 17 जून से एक बार फिर से बैंड बाजों के साथ शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी और शादी समारोहों की रौनक लौट आएगी। 15 जून को अधिक मास का समापन होने जा रहा है। इसी दिन सोमवती, अमावस्या, संक्रांति और पहला प्रविष्ठा का विशेष संयोग भी बन रहा है। सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास अमावस्या 14 जून को दोपहर 12:20 से प्रारंभ होकर 15 जून को सुबह 8:23 तक रहेगी। धार्मिक दृष्टि से ये समय स्नान, दान, तर्पण और पितृ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 15 जून को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को लेकर भी धार्मिक स्थलों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालु यमुना तट और मंदिरों में स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना करेंगे। अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो सोमवती अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य और पीपल पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर उसकी 108 परिक्रमा करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं।

क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय केवल महिलाओं के लिए एक दिवसीय निशुल्क पिंक रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मेला 20 जून को साईका तकिया चौराहा स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस मेले में हाईस्कूल से परास्नातक उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष की अभ्यर्थी भाग ले सकती हैं। हम आपको पुनः बता दें, इस मेले का आयोजन 20 जून को साई का तकिया चौराहा स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा।

श्रोताओं, आगरा रेल मंडल दिव्यांग यात्रियों की सुविधा हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में अप्रैल और मई माह में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों के लिए कुल 108 रेलवे रियायत कार्ड ऑनलाइन बनाकर जारी किए गए। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

0: गर्मी की छुट्टियां हैं तो ऐसे में कुछ लोग रेल यात्रा करके कहीं जाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ सूचनाएं हैं। रेलवे ने लालकुआं वलसाड़ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन लालकुआं से 11 जून से 9 जुलाई तक, हर गुरुवार, वलसाड़ से 12 जून से 10 जुलाई तक, हर शुक्रवार को चलेगी। इसी तरह रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी की है। 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को संचालित होगी ये ट्रेन। प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होती हुई जाएगी। तो इसके साथ साथ रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा भी कर दी है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काठगोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी। एक सेकेंड एसी, चार थर्ड एसी, सात स्लीपर और चार जनरल कोच इसमें लगे होंगे। इसके साथ साथ इटावा आगरा कैंट और आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू ट्रेनों का अस्थायी विस्तार मथुरा जंक्शन तक कर दिया गया है और ये व्यवस्था 15 जून तक लागू रहेगी। रेलवे ने इटावा आगरा कैंट मेमू का संचालन 10 जून से 15 जून तक मथुरा जंक्शन तक बढ़ा दिया है। ये ट्रेन आगरा कैंट से सुबह 10:35 पर रवाना होकर 10:46 तक राजा की मंडी पहुंचेगी और दोपहर 12:15 पर मथुरा जंक्शन पहुंच जाएगी और आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू और मथुरा जंक्शन से संचालित होगी। ये ट्रेन मथुरा से दोपहर 1:10 पर चलेगी और 1:45 पर राजा की मंडी पहुंचेगी और 2 बजे आगरा कैंट आएगी। यहां से आगे अपने निर्धारित मार्ग झांसी के लिए रवाना होगी। तो बात रेल यात्रा की हो रही है तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चो, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

भाप, भाप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर यात्रा रेडी। एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक।

हाथ मंगल के हाथ गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर सोलापुर सोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल।

पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम उंगोल नर्द गोल नर्द गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव मंदबाद मंदबाद मंदबाद मंदबाद सौर नूर पोत नूर सौर नूर पोत चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10 जुलाई तक का समय मिलेगा।

और अब एक सूचना परीक्षार्थियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 17 जून को जारी किए जाएंगे। 1400 से अधिक सीटों के लिए 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 30 रिसर्च मेथोडोलॉजी के और एप्टीट्यूड के, और 70 विषय आधारित प्रश्न होंगे।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। दमलेश पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम गड़ी खरना ठीर जनपद कासगंज से 23 अप्रैल सन 2026 से लापता है। दमलेश की उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच और रंग की हुआ है। श्रोताओं, दमलेश के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना खरना ठीर कासगंज की पते पर सूचित करें। कासगंज से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार वंदना पुत्री रामनाथ निवासी नगला मंशा थाना पटियाली जनपद कासगंज से दिनांक 5 मई सन 2026 से लापता है। वंदना की उम्र 20 वर्ष, कद 4 फुट 9 इंच, चेहरा गोल और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय वंदना ने नीले रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। वंदना के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना पटियाली कासगंज के पति पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार पूजा पत्नी राजू निवासी मोहल्ला चौक कस्बा पटियाली थाना पटियाली से दिनांक 17 अप्रैल सन 2026 से लापता है। पूजा की उम्र 32 साल, कद 5 फुट 5 इंच और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय पूजा ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। पूजा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना पटियाली जनपद कासगंज के पते पर सूचित करें।

लिखा थाना और तहसील पटियाली से दिनांक 25 मार्च सन 2026 से लापता है। इब्ले हसन की उम्र 35 साल, कद 5 फुट 5 इंच और रंग सांवला है। श्रोताओं, इब्ले हसन के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना और तहसील पटियाली कासगंज के पति पर सूचित करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी बिछड़े हुए को उसके परिवार से मिलवा सकता है। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। शुद्ध 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जिले में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन वाईब्रेक योग कराया जाएगा। आयुष मंत्रालय और शासन के निर्देशानुसार 14 जून को

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। शुद्ध 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जिले में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन वाई ब्रेक योग कराया जाएगा। आयुष मंत्रालय और शासन के निर्देशानुसार 14 जून को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय के YouTube प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन योग सत्र आयोजित होगा। इसमें अधिकतम संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभागियों को टोल फ्री नंबर 1800315708 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण कराना होगा। इस टोल फ्री नंबर को आप पुनः नोट कर लें। नंबर है 1800315708। इसके बाद उन्हें सत्र का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्थी एजिंग निर्धारित की गई है। इसके तहत सभी कार्यालयों में कार्य प्रारंभ होने से पहले 5 से 7 मिनट का वाई ब्रेक योग कराया जाएगा। जिला प्रशासन संबंधित वीडियो साझा करके इनके माध्यम से नियमित योग गतिविधियां संचालित की जाएंगी। तो हम आपको बता दें कि वाई ब्रेक योग क्या होता है। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक विशेष 5 मिनट का योग मॉड्यूल है जो काम के बीच तरोताजा होने में मदद करता है। इसके तहत कर्मचारी बैठे बैठे ही योग और प्राणायाम कर तनाव दूर कर सकती है। व्यस्त दिनचर्या और लगातार एक ही जगह बैठने के कारण होने वाले तनाव और रीढ़ की हड्डी के स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। इसे आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। इसमें ताड़ासन, स्कंद चक्र, कटी चक्रासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान शामिल है। तो पुनः बता दें, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जिले में 15 से 21 जून तक ये योग सप्ताह मनाया जाएगा।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। श्रोता, ओज से भरी इन पंक्तियों ने हजारों नौजवानों, मातृभूमि के दीवानों को देश की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर होने की प्रेरणा दी। ये विचार थे महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के। श्रोताओं, ये बात सच है कि कोई भी राष्ट्र संरचनाओं से महान नहीं बनता, बल्कि त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ किए गए प्रयासों और कार्यों से ही राष्ट्र के सुदृढ़ भविष्य की नींव तैयार होती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी अपने बलिदान से स्वतंत्र भारत के महान लक्ष्य को प्राप्त किया और विश्व के सबसे प्राचीन राष्ट्र भारत को गौरवशाली सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म आज ही के दिन 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मुरलीधर और मां का नाम मूलमती था। आप बेहद साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे। आप अपनी मेधा, प्रतिभा, देशभक्ति और बलिदान से असंख्य व्यक्तियों के श्रद्धा पात्र हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के सानिध्य में घर पर ही हुई। इन्होंने अंग्रेजी से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। जब आप 9वीं कक्षा में थे तब आप आर्य समाज के संपर्क में आए। इन्हें वैदिक धर्म जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आर्य समाज के सदस्य और देशभक्त भाई परमानंद की गिरफ्तारी और फांसी की सजा ने रामप्रसाद बिस्मिल को झकझोर दिया। इनके अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी। इसके बाद ही इन्होंने विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकने का दृढ़

निश्चय कर लिया। बिस्मिल और प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित ने मैनपुरी, इटावा, आगरा, शाहजहांपुर जिलों में गुपचुप अभियान चलाया और युवकों को देश की आन पर मर मिटने के लिए संगठित किया। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में काकोरी की घटना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। रामप्रसाद बिस्मिल ने 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद सहित अपने 9 साथियों के साथ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर शाहजहांपुर में सवार होकर चेन खींचकर रेलगाड़ी को रोका और सारा खजाना लूट लिया। इस कार्य में उनके साथ अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचिंद्रनाथ बख्शी, मन्मथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल शर्मा और बनवारी लाल शामिल थे। इस घटना के बाद रामप्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें गोरखपुर जेल में कुछ दिनों तक रखा गया। महीनों तक मुकदमा चला और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।

0: शतो फांसी से पूर्व बिस्मिल ने स्नान किया, तैयार हुए। जब इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश। इसके बाद इन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ किया, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया।
1: क्या बताए हम जुनूने।
0: शतो राम प्रसाद बिस्मिल का त्याग सदियों तक जन्मभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित करने की प्रेरणा देता रहेगा। माँ भारती के वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल को हमारा शत शत नमन है, वंदन है। और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोतो इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारी दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से

0: हर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के

0: विकास के जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि

0: हुर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the

0: कि अंथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इतिहाद ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संग मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
2: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
1: हिफ्जान सेहत से मुताल्लिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
3: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई है जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरी करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेचकर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की जेर क्यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज पर तबादले ख्याल किया गया। मस्कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने

0: भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
1: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारतीय एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
0: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशिम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि जमीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना। स्वर थे अनुराधा पौड़वाल, श्रीराम सुजाता, सोनू निगम और ए.आर. रहमान के।

श्रोताओं, स्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल को। बोल थी नुसरत बद्र की, फिल्म थी देवदास।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और अब लीजिए सुनिए सोनू निगम को, फिल्म है लकी, बोल है समीर के, धुन बनाई है अदनान सामी ने।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना। स्वर थे सोनू निगम और अलका याग्निक की फिल्म थी बॉर्डर। और अब लीजिए सुनिए किसना फिल्म से उदित नारायण मधुश्री को। बोलिए जावेद अख्तर की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, उदित नारायण और मधु जी के गाय इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम की टंटी अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: सोनपुर जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
2: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
3: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
2: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कैनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता पर की। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण कार्य एवं उसकी मोटाई और मजबूती की

0: भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माह के नाम के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
1: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं, जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में उनका प्रयोग कैसे करें, और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं हरी खाद बनाने के लिए, सनी ढैचा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
0: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैचा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
3: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क, राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में नकलविहीन एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं

0: की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले 2 दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। वहीं गेहूं के केंद्र मंडी समिति भगवतीगंज में गेहूं बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की यह अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर संकरी का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा जल है तो कल है का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मजूशा।

एसटी परमन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे नीरज की शब्द रचना। स्वर्धा लता मंगेशकर का फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर से लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, धुन बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम है खानदान।

श्रोताओं, इस गीत में स्वर थे लता महमूद और लता मंगेशकर के, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने, फिल्म का नाम था छाया। और अब लीजिए सुनिए फिल्म कश्मीर की कली से इस गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। SH बिहारी के बोलो को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की का इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं शीलो के गाये कुछ लोक गीत। आपके साथ संगीत कलाकार हैं, ढोलक पर प्रस्तुति है राधा मोहन शर्मा की, हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं दीनदयाल और साइट रिदम है राजकुमार पांडे का।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शीलो के गाए कुछ लोक गीत।

0: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिलोके का कुछ लोक गीत। आपके साथ संगत कलाकार थे, ढोलक पर प्रस्तुति थी राधा मोहन शर्मा की, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे दीनदयाल और साइड रिदम था राजकुमार पांडे का। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। स्वर थे उमर और नदीम, उमा नदीम और श्रेया घोषाल के बोल थे इरशाद कामिल के, धुन बनाई थी संदेश चांडिली ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी की शब्द रचना। स्वर थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की फिल्म थी फना।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब लीजिए सुनिए ओंकारा फिल्म से। श्रेया घोषाल विशाल भारद्वाज को, गीतकार है गुलजार, संगीतकार है विशाल भारद्वाज।

साथियों, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक के जगत स्वरों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन। विलंबित रचना झप ताल में निबद्ध है, द्रुत रचना तीन ताल में और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तो प्रस्तुत है अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान से राग तेन सेनी बिलावल में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे लेकर आज आई है आपकी रेडियो हम सफर मुगल दीवारी। श्रोताओं, सिनेमा समाज का आईना होता है, ठीक वही समाज सिनेमा का आईना होता है। कैसे, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में जो कुछ घटित होता है, इन सब से या तो हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं या फिर उस घटना की गहराई को नहीं समझ पाते जानने के बावजूद। तो यही वो फिल्म डायरेक्टर्स और कहानीकार हैं जो सत्य घटना को थोड़ी फिल्मी टच देकर, मसाला मिलाकर समाज के सामने सिनेमाई पर्दे पर दिखाते हैं। तब लोगों को पता चलता है, तो अच्छा तो ये हुआ था, जैसे प्रतिक्रिया सामने आती है। ठीक वैसे ही फिल्मों से भी इंस्पायर होकर आए दिन हमारे साथ समाज में दुर्घटनाएं भी होती हैं। कुछ फिल्में आती हैं जिनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना होता है, वो समय के साथ भुला दी जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं, और ऐसे फिल्मों के पीछे होते हैं कुछ ऐसे फिल्मकार जिनकी सोच अपने समाज से कई कदम आगे होती है, अपने समय से भी आगे होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिनेमा के एक ऐसे ही जादूगर की, जिन्होंने रहस्य को रोमांच बनाया, प्रेम को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, संगीत को कहानी का हिस्सा बनाया और कैमरे को एक कलाकार की तरह इस्तेमाल किया। एक ऐसे निर्देशक जिनके फिल्मों में सस्पेंस था, संवेदनाएं थी, गीत भी थे और जिंदगी की सच्चाई भी। ये कहानी है फिल्म निर्माता निर्देशक राज खोसला की। तो बातें होती हैं आगे भी, लेकिन थोड़ा विराम और सुनते हैं ये बढ़िया सा गाना जो राज खोसला के फिल्म से ली गई है।

0: chien.
1: श्रोताओं, राज खोसला अभिनेता या निर्देशक बनने मुंबई नहीं आए थे, बल्कि एक गायक बनने आए थे। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के शहर लुधियाना में हुआ था। बचपन से ही रुचि उनकी संगीत में थी, तो अक्सर गाना गुनगुनाते रहते थे। उस समय भारत में फिल्मों का संसार जो है वो तेजी से विकसित हो रहा था। रेडियो का दौर था और गायकों की लोकप्रियता चरम पे थी। राज खोसला भी गायक बन अपनी पहचान बनाना चाहते थे। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद भी जब बात ना बनी और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब से। यही मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गुरुदत्त ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का अवसर दिया और यहीं से शुरू हुआ राज खोसला का एक नया सफर। गुरुदत्त अपने समय के बेहद संवेदनशील और प्रतिभाशाली फिल्मकार थे। उनके साथ काम करना किसी फिल्म के स्कूल में पढ़ने जैसा था। राज खोसला ने निर्देशन के हर पहलू को बड़े करीब से देखा। कैमरा एंगल, दृश्य निर्माण, कलाकारों के से कैसे अभिनय करवाया जाता है, उन्होंने हर चीज को सीखा।

और धीरे धीरे गुरुदत्त को भी ये महसूस होने लगा कि राज खोसला में एक स्वतंत्र निर्देशक बनने की पूरी क्षमता है। आगे क्या क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, 1956 में राज खोसला ने फिल्म मिलाप का निर्देशन किया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इस निर्देशक ने अपनी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान तो जरूर खींचा। श्रोताओं, इसके बाद राज खोसला ने जिस फिल्म का निर्देशन किया, उसने उनकी किस्मत को बदल दिया। वो फिल्म थी CID। फिल्म में अपराध, रहस्य, रोमांच और संगीत का बेजोड़ तालमेल था। दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। राज खोसला बन गए द राज खोसला। और 1960 में के दशक में राज खोसला ने ऐसे फिल्मों का निर्माण किया जिन्होंने हिंदी सिनेमा में रहस्य और सस्पेंस की परिभाषा बदल दी। 1964 में आई फिल्म वो कौन थी, याद है ना आपको ये फिल्म? सफेद साड़ी में वो रहस्यमयी महिला, ढूंढ भरी रात, रोमांच पैदा करता हुआ संगीत। उस फिल्म के गाने वाह वाह वाह वाह, क्या गाने थे। तो अब जब उस फिल्म की बात छेड़ी गई है, तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, वो कौन थे फिल्म के बाद दो और फिल्में आई राज खोसला की, जिनका नाम था मेरा साया और अनीता। इन तीन फिल्मों को अक्सर सस्पेंस ट्रिलॉजी कहा जाता है। श्रोताओं, राज खोसला के फिल्मों की एक खासियत उस फिल्म का संगीत भी होता था। चूंकि वो खुद गायक बनना चाहते थे तो संगीत की परख भी थी। गीत संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं फिल्म की कहानी का हिस्सा मानते थे। तभी तो आज भी उनकी फिल्में और उनका गीत लोगों की जुबान पर होता है। दो बदन या दो रास्ते, क्या ही लाजवाब गाने हुआ करते थे उस फिल्म के। दो बदन फिल्म की वो प्रेम कहानी बहुत पसंद किया लोगों ने। आइए सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, 1969 में आई फिल्म दो रास्ते एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें रिश्तों, त्याग, समर्पण और परिवार के महत्व को दिखाया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। आज भी इसे क्लासिक पारिवारिक फिल्मों में गिना जाता है। श्रोताओं, राज खोसला बेहद ही अनुशासित और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे काम के प्रति समर्पित भी थे। राज खोसला ने अपने लंबे करियर में कई सम्मान भी प्राप्त किए। उनकी कई फिल्में आलोचकों और दर्शकों दोनों को ही पसंद आई, विशेष रूप से मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म की बड़ी सराहना मिली। आज भी फिल्म अध्ययन करने वाले छात्रों को उनकी फिल्में उदाहरण के रूप में देखने को मिलती हैं। इस फिल्म के लिए राज खोसला को 1989 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला। राज खोसला ने कई फिल्में ऐसी बनाई जो आज भी उतनी ही तरोताजा हैं जितनी तब हुआ करती थी, जैसे कि सनी, दो रास्ते, दो बदन, मेरा साया, मेरा देश मेरा गांव, वो कौन थी, काला पानी, बम्बई का बाबू, एक मुसाफिर एक हसीना, चिराग। तो आइए एक और गाना सुनते हैं।

श्रुताओं, राज खोसला उन बेहतर निर्देशकों में हैं जिसके जिस फिल्म को हम चाहे जितनी बार देखें उसकी कहानी ना कभी भूल सकते हैं और उस फिल्म के गाने आज भी उतने ही खूबसूरत हैं जितने तब हुआ करते थे। तो आज इस निर्देशक के कौन सी फिल्म का कौन सा गाना मैं आपको सुनवाऊं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मनोरंजन का ध्यान रखते हुए जितनी ज़्यादा ज्ञान गाने में आपको सुना सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलते चलते आपकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी एक और गाने के साथ आपको टाटा बाय बाय करती है।

मीडियम वेव 106.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी एक बार फिर से आ गई है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर। श्रोताओं, आजकल के तनाव से भरी जिंदगी में अगर हमको ऑप्शन मिले बचपन में लौटने का, तो क्या आप इसे चुनोगे? मैं तो पक्का ही हाँ बोलूंगी, क्योंकि बेफिक्र सी जिंदगी, ना खुद को बेहतर प्रूफ करने का दबाव, ना कोई जिम्मेदारी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ मस्ती, अपने मन के करने की आजादी, ना कोई रोक ना कोई टोक, क्योंकि समझ नहीं होती है ना। समझ आते आते जिंदगी दबाव में आ जाती है। पालने में जब बच्चा हाथ पैर फेंकता हुआ किलकारी करता है तो कहा जाता है, देखो कैसे खेल रहा है। थोड़ा और बड़ा होकर जब घुटनों के बल चलता हुआ जब सामान इधर से उधर करता है तो भी कहा जाता है कि देखो कितना खेल रहा है। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसके हाथ में बैट बॉल पकड़ा दिया जाता है कि खेलो खेलो। उस वक्त तक माँ बाप को ये पता नहीं होता है कि बच्चा इसी बैट बॉल को खेलने में अपना करियर बनाएगा, या इसी फुटबॉल को किक मारते मारते एक दिन देश का प्लेयर बन जाएगा। और अगर पता होता भी तो उसे उस वक्त भी फुटबॉल या बैट बॉल की जगह किताबें ही पकड़ाई जाती। पर इसमें माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है। बच्चों को खुद कहाँ पता होता है कि खेल में करियर बनाया जा सकता है। उस गाने की लाइन याद है आपको, पढ़ोगे लिखो

तो बनोगे नवाब, और जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगी खराब। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। अरे हाँ ना, पहले ऐसा ही माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। ये तब्दीली क्यों और कैसे आई, इस विषय पर बात करने वाले हैं हम आज, क्योंकि एक गीत सुनने के बाद बताऊँ।

हाँ तो श्रोताओ, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, वो विषय है, आज है खेल कूद दिवस। श्रोताओ, ऐसे तो आज बच्चे पहले की तरह मिट्टी में नहीं खेलते, बल्कि खेलते दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, वीडियो गेम्स। पहले घुटनों पर लगी चोट खेल की पहचान हुआ करती थी, पर आज आंखों पर चश्मा, घंटों की स्क्रीन टाइम नई चिंता का विषय बन गया है। यही वजह है कि दुनिया भर में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल बच्चों का अधिकार है और उनकी जरूरत भी। खेल ही वो माध्यम है जो एक बच्चे को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। एक बच्चा जब खेल के मैदान में दौड़ता है तो वो केवल दौड़ नहीं रहा होता है, वो अपने फेफड़ों को मजबूत कर रहा होता है, वो अपने दिल को स्वस्थ बना रहा होता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहा होता है, दोस्ती, सहयोग, अनुशासन का पाठ सीख रहा होता है खेलते टाइम। यानी खेल

बड़ों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

शुदा, मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र समान है, एक ही स्कूल में पढ़ते भी हैं, लेकिन शाम को एक बच्चा मैदान में खेलने जाता है और दूसरा खाली वक्त में वीडियो गेम खेलता है और टीवी या मोबाइल देखता है। कुछ वर्षों के बाद अंतर उनमें साफ दिखने लगता है। जो बच्चा बाहर खेलता था, उसका आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी, सोशलाइजेशन होना दूसरे बच्चों के कंपेरेटिवली अधिक होगा। चुनौतियों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि खेल सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी आपको ज़्यादा स्ट्रांग और एनर्जेटिक बनाता है। निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है, क्योंकि जीतने के लिए हमेशा हर सिचुएशन के लिए बॉडी के साथ साथ दिमाग का भी एक्टिव होना ज़रूरी है। श्रोताओं, आगे बात करेंगे कुछ खास प्लेयर्स की जो छोटी उम्र में ही बड़े नाम कमाए हैं। फिलहाल ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं सोचिए जरा, कैप्टन कूल यानी हम सबका प्यारा और फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी, अगर सिर्फ पढ़ाई करते रहते और सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े रहते तो क्या 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे देश में आ पाता? फोगाट बहने, अगर बचपन से उनके पापा ने उन्हें अनुशासन

फिट और एक्टिव ना रखा होता तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल्स ले पाती? विजेंद्र सिंह, जिसने बचपन में ही सोच लिया था कि मुक्केबाजी के खेल में करियर बनाना है, कई मेडल्स भी जीतना है। श्रोताओं, आप अपने बच्चों से अगर पूछें कि गुकेश कौन है तो वो हंसकर बोलेंगे, आपको नहीं पता, वर्ल्ड का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है गुकेश टी। मात्र 18 साल की उम्र में चीन के डिंग लिरेन को हराकर शतरंज का बादशाह बना गुकेश। और जिस क्रिकेट का दीवाना भारत का व्यक्ति व्यक्ति है, उसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता हुआ वैभव सूर्यवंशी मात्र 15 साल का है। जिस उम्र में बच्चों को समझाया जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उस उम्र में वैभव को पढ़ाई के अलावा अपने पैशन पर भी ध्यान देखा हुआ था। तो श्रोताओं, तन और मन दोनों को एक्टिव, डिसिप्लिन और खुश रखिए।

और हर मैदान फतेह करने के लिए जरूरी है कि तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। तो श्रोताओं, पढ़ाई भी और खेल दोनों से दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है, इसलिए सोच को बदलिए। तो चलिए, इसी के साथ अपनी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दूसरे कार्यक्रम की तरफ चलने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 31530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
2: जी,
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है।

0: है किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य

साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पौंडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पौंडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पौंडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा

0: ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
2: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली

0: अपनी जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
1: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में

0: अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग,
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जिसका नाम था उमंग। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर, 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में होगा, कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने।

अरिजीत सिंह की और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे इरशाद कामिल की रचना। संगीता ए आर रहमान का, फिल्म का नाम था तमाशा। तनुवेट्स मनु, इस फिल्म में सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में राजेश खर का लिखा गीत। संगीत है कृष्णा का।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन टू से। ये गीत जिसे भी संगीत था अंकित तिवारी का। अगला गीत हमने लिया है फिल्म विवाह से। आवाज उदित नारायण और श्रेया घोषाल की है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: कुछ ऐसे बसा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार

घर संसार कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी बहनों को ललित वत्स का नमस्कार। बहनों, आज यदि हम आपसे बात करें अपने देश की स्वतंत्रता की, तो ये यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य वीर मातृभूमि पर कुर्बान हो गए थे। इसे प्राप्त कराने में बिस्मिल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक और कवि भी थे। उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। आज ही के दिन 1897 में इस महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था। वे प्रसिद्ध काकोरी कांड के प्रमुख नायकों में से एक थे। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। बहनों, बिस्मिल कई भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन एवं अनुवाद भी किया। उनका मानना था कि युवाओं को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। युवावस्था में ही देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखना उन्होंने शुरू किया था। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। मैंने 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन अंतिम क्षण तक उनके चेहरे पर भय और घबराहट नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए गर्व और समर्पण का भाव था। अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरक मित्रताओं में गिनी जाती है। धर्म अलग होते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक था, देश की आजादी। ऐसे अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल को शत शत नमन, जिनकी वीरता और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बहनों, ये स्वतंत्रता हमें कठिन यत्नों से प्राप्त हुई है। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर कहीं हम इसे व्यर्थ न जाने दें। यदि हमने इसे यहीं यूं ही व्यर्थ जाने दिया, तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और सौर ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि हर समय सूर्य का प्रकाश हमें उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हमें ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें हवा की शक्ति से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। ये प्रदूषण रहित होती है। बायोमास ऊर्जा भी सौर ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। इसमें कृषि अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इससे कचरे का सही उपयोग भी हो जाता है। आज के समय में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा के बहुत से नए स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। हमें अपने बच्चों में

0: एवं स्वयं के लिए भी ऊर्जा की बचत जरूर करनी चाहिए। बहनों, प्रदूषण की वजह से आज देखा जाता है कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, जबकि इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो आइए बहनों, सुनते हैं आकांक्षा गुप्ता से वार्ता, ओजोन परत संरक्षण और हम।
1: विज्ञान आधुनिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। आधुनिक खोजों और आविष्कारों ने मनुष्य के आराम के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे लिए आराम है, वास्तव में वह अप्रत्यक्ष रूप से अभिशाप भी बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जिनका पहले कभी नामो निशान नहीं था, कोरोना वायरस इसका एक उदाहरण है। वहीं खेतों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से फसलों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उनमें पहले जैसे पोषक तत्व और शुद्धता नहीं रही, और इस वजह से तमाम बीमारियां पनप रही हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से, बढ़ते औद्योगिकीकरण से वातावरण में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू हैं। एक सकारात्मक पक्ष, जिससे हमने बहुत कुछ पाया है, तो दूसरा नकारात्मक पक्ष, जिसके चलते हमने बहुत कुछ खोया भी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी अपनी कविता में कहा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी है धार। इसी नकारात्मक पक्ष की देन ओजोन परत में होने वाले छिद्र हैं। आपको बताते चलें, ओजोन परत समताप मंडल में उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। ओजोन परत एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। यूं कहें कि ये परत हानिकारक यूवी किरणों को सोखने का कार्य करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना आवश्यक है, यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, लेकिन यदि ओजोन परत ना होती तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण बिना फिल्टर हुए ही पर्यावरण में पहुंचकर मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती। वहीं इन पराबैंगनी विकिरण से लाखों लोग त्वचा और आंखों संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो सकते थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। दरअसल 1970 के दशक के मध्य में वैज्ञानिकों ने जाना कि वायुमंडल में हैलोजन यानी क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैसों के जमा होने से ओजोन परत को खतरा है। फिर 1980 के दशक के मध्य में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज की। इस प्रकार 1970 और 1980 के दशक में वैज्ञानिक खोजों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के बाद 1985 में वियना कन्वेंशन को अपनाया गया। गौरजरेटर, एरोसोल केन और अस्थमा के रोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इनहेलर में व्यापक रूप से किया जाता था। वहीं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC, हेलोन और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे अन्य रसायन भी ओजोन परत को नष्ट करने का कारण बताए गए। इतना ही नहीं, अधिकांश कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों के पुर्जे ओजोन शैकारी सॉल्वेंट से साफ किए जाते थे। कार के डैशबोर्ड, पानी के बॉयलर और यहाँ तक कि जूते के तलवे भी CFC या HCFC का उपयोग करके बनाए गए थे। वहीं कार्यालयों, कंप्यूटर सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और जहाजों में आग से बचाव के लिए हेलोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में किया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले ODS के रूप में संदर्भित मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में छोड़े जाने पर ये रसायन समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच है, और मनुष्यों और पर्यावरण को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक स्तरों से बचाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सभी को ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, और यह बताता है कि यह परत सभी जीवित प्राणियों के लिए कैसे सहायक है। आपको बता दें, इस दिन की थीम संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित की जाती है। इस वर्ष

0: की थीम जीवन के लिए ओजोन वैश्विक सहयोग के 35 वर्ष है, जो कि पिछले 35 वर्षों में ओजोन परत की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों के सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। साथ ही ओजोन परत की रिकवरी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सकारात्मक प्रभाव की सराहना करता है। विश्व ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 22 मार्च 1985 को वियना कन्वेंशन हुआ था, जिनमें 28 देशों द्वारा सहभागिता की गई थी। उसके बाद वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया, जो प्रभावी संधियों में से एक है। हालांकि इसके बाद दुनिया में पहचाने गए ओडीएस के विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग बढ़ गया। यह ओजोन परत को नष्ट तो नहीं करता, लेकिन उनमें ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बहुत अधिक है। HFC गैस के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 2016 में किगाली बैठक में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुमानों से पता चलता है कि अंटार्कटिका में 2066 तक, आर्कटिक में 2045 तक और शेष विश्व में 2040 तक ओजोन परत 1980 के स्तर पर पहुंच सकती है। फिलहाल इसका धीरे धीरे ठीक होना पाया गया है, लेकिन ओजोन परत के क्षरण से किसी क्षेत्र या देश पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ग्रह पर इसका असर देखने को मिलता है। गौरतलब है कि ओजोन परत को बचाए रखने और नष्ट करने में हम इंसानों की सबसे बड़ी भूमिका है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी आकांक्षा गुप्ता से वार्ता ओजोन परत संरक्षण। और हाँ बहनों, आज हमारे साथ हमारी सखी है मुकुल जी। मुकुल जी, आज हर घर में बालकनी तो होती है भाई, है ना, और हर व्यक्ति चाहता है कि बालकनी जो है उनकी वो बहुत ही खूबसूरत लगे। घर की सफाई तो भाई सब करते ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं बालकनी खूबसूरत लगे, है ना। इसके लिए वो बहुत सारी तरकीबें अपनाते रहते हैं, कुछ आप बताएंगे हमारी बहनों को।
2: जी ललिता जी, मैंने तो ये भी देखा है कि बालकनी को रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए, इसमें वो बेहद खूबसूरत है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इतने प्यारे प्यारे फूल हम लोग कभी गुजरते हैं और देखते हैं किसी की बालकनी तो देख के इतना अच्छा सा लगता है, रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मुझे एक बात और कि यदि वो पक्षियों के लिए कुछ रख दिया जाए, यदि कटोरा रख देते हैं, उसमें पानी रख देते हैं, दाना डाल देते हैं, तो वो भी आपकी मानवीयता को दर्शाता है ना
2: जी ललिता जी।
1: ये है ना जी, तो ये भी करना चाहिए।
2: आजकल लोग छोटी सी बालकनी को भी मिनी गार्डन बना देते हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम है इसमें
1: कच्ची जगह भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो यदि नहीं होती है कच्ची जगह तो फिर गमले रखे जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग रखते भी हैं गमले। मेरे को लगता है एक बार मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपके घर आई थी, आपने गमलों से पूरी अपनी बालकनी को सजाया हुआ था, मुझे याद है। तो उसमें बहनों तुलसी के पौधे, मनी प्लांट, गुलाब, चमेली, एलोवेरा, है ना, इस तरीके के पौधे जो है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ इससे वातावरण जो है हमारा वो शुद्ध होता है
2: जी। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक छोटी सी बालकनी घर की शुद्ध वायु और मानसिक तनाव को दूर करने में काफी मदद करता है।
1: हाँ बिल्कुल, सुकून के पल बालकनी में यदि बिताए जाए और एक चाय हो, अरे वाह मजा ही आ जाए।
2: क्या बात है
1: बहनों, अभी हमें आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो, ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, हर रिश्ता आपसी विश्वास और अपनत्व पर टिका होता है। यदि रिश्तों में प्रेम और अपनत्व ना हो तो वह बिखर जाता है। यही विश्वास का रिश्ता पति पत्नी के मध्य होना चाहिए। इन दोनों के संबंधों के मध्य कोई बारीक सी लकीर भी दिल को ठेस पहुंचाती है और दिल

बहनों, हम सभी सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहते हैं और आजकल छुट्टियां हैं तो हमारी बहनें जो हैं वो तो बहुत ही व्यस्त होंगी। और जब हम काम करते हैं तो गलतियां होना भी स्वाभाविक है और गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए माफ़ी मांगना, ये एक अच्छी आदत होती है और ये है आपके मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होती है, आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाती है। बच्चों को हमें बचपन से ही यह सिखाना चाहिए कि यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने की जगह स्वीकार करें और सॉरी कहने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। जब बच्चे माफ़ी मांगना सीखते हैं तो उनमें विनम्रता, जिम्मेदारी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। और सही मायने में अच्छा व्यक्ति तो वही है जो दूसरों की भावनाओं को समझे।

यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे समझने का प्रयास करे कि कहीं उसकी वजह से तो वह परेशान नहीं है। इससे उनके रिश्तों में मजबूती आती है और वह समाज में अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। माता पिता और शिक्षक बच्चों के सबसे बड़े आदर्श होते हैं। यदि बड़े अपनी गलती होने पर बच्चों से भी माफ़ी मांगें तो बच्चे इस व्यवहार को जल्दी ही सीखते हैं। बच्चों को ये महसूस होता है कि माफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी नहीं होती। बहनों, रूठना मनाना तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन यदि जीवन में आपसे कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी मांग लेना या रूठे को मना लेना आपकी महानता को दर्शाता है और संबंधों को मधुर बनाता है। रूठने वालों से कोई पूछे ही जाकर, खुद से रूठे रहे वो या हमसे मनाया ना गया।

आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम था घर संसार। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। कलाकार हैं परवेज मेहती।

0: Raid's 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Center waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने

0: के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि

0: कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार

ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद का गाया राग भैरवी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म छोटी बहन से। आवाज़ मुकेश की है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: बार गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

दूर का राही का ये गीत। संगीतकार थे किशोर कुमार। बुरे बिस्तर गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से। आवाज है लता मंगेशकर की। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

असली नकली फिल्म के इस गीत के साथ ही बोले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रहेगा अगले कार्यक्रम तक, जिसका नाम है गीत गुंजन। आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में निदा फाजली की रचना, संगीत है उषा खन्ना का।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी जोशीले। इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे हैं कटी पतंग फिल्म में किशोर कुमार को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। इसके पहले आपने सुना फिल्म शराबी में किशोर कुमार को। संगीत था बप्पी लहरी का और गीत को लिखा था प्रकाश मेहरा ने।

परवीन सुल्ताना की आवाज में आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म का वो गीत जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी गीत के साथ गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र

0: से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता। डॉक्टर अमित शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत, विषय होगा खेलकूद, स्वास्थ्य और फिटनेस।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के दौर में जहां एक ओर तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर हमारी शारीरिक सक्रियता जो है वो लगातार कम होती जा रही है, निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जीवन शैली से जुड़े रोग, मोटापा हो, मधुमेह हो, हाई बीपी, तनाव, अवसाद, ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में ज़रूरत है खेल और नियमित शारीरिक गतिविधियों को और उनके महत्व को समझने की। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित शर्मा जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले श्रोताओं को ये बताएं कि ये जो मौके हैं, जैसे खेल कूद का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डेज ऑफ प्ले मना रहे हैं, और खेलों को स्वास्थ्य से किस प्रकार जोड़कर देखा जाए।
2: देखिए, खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिना खेलकूद के हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, और हर एक लाइफ में हर एक कैटेगरी के लोगों को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, सभी के लिए जीवन में खेल होना, फिजिकली खेलना बहुत जरूरी है।
1: खेलों का बड़ा महत्व है हर एक के जीवन। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि खेल जो है केवल खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी खेलकूद उतना ही महत्वपूर्ण है।
2: जी, बहुत जरूरी।
1: क्यों?
2: क्योंकि बिना खेल के हम लोगों की फिजिकल फिटनेस नहीं बन सकती, और फिजिकल फिटनेस नहीं बनेगी तब तक हमारा माइंड डेवलप नहीं हो सकता। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें नजरिए से, तो हमारा खेल हेल्थ में बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं क्लिनिकली देखा जाए, और बीमारियों से बचाने के लिए खेल बहुत जरूरी है। आजकल फिजिकली खेल विलुप्त तो होते जा रहे हैं, लाइफ बिजी हो गई है कि लोग उसको बहुत अवॉइड कर रहे हैं।
1: आपने ठीक कहा कि आजकल जमाना जो है तकनीक का है, डिजिटल युग है, और ऐसे में बच्चे हों, युवा हों या बड़े बूढ़े, सारे के सारे आजकल देखिए आप तो मोबाइल में, कंप्यूटर में, सोशल मीडिया में, इनका उपयोग बढ़ने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते होंगे, क्या ज्यादातर समस्याएं उभर के सामने आती हैं?
2: देखिए, आजकल जो लैक ऑफ फिजिकली एक्सरसाइज हो रही है, लोग काम करने से बच रहे हैं, खेल कूदने से बच रहे हैं, फिजिकली वर्क करने से बच रहे हैं, आलसी हो गए हैं। सॉफ्ट तरीके से आदमी काम करने की सोच रहा है, और इक्विपमेंट्स पे डिपेंड हो गया है आजकल आदमी, कंप्यूटर लैपटॉप की लाइफ है, नौकर हैं, तो फिजिकली एक्टिविटी जहाँ कम हो रही है, बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर रही हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आजकल पेशेंट आते हैं, बच्चे हैं, जैसे कि गर्दन की समस्याएं, झुका झुका के काम कर रहे हैं, आंखों की समस्या है,
1: कमर दर्द है,
2: है ना, माइंड डेवलप नहीं हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का। आजकल तो माएं इतना वो हो गई हैं कि बच्चा पैदा होता है मोबाइल दे देती हैं, और मोबाइल देखने से बच्चा इतना आदि हो गया
1: है,
2: इतना हैबिचुअल के आंखें अभी से चश्मे लग गए बच्चों को, तो इतना कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है बैठे बैठे, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों की समस्याएं हो रही हैं लोगों को, तो फिर वो क्लिनिकली फिर डॉक्टरों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं आजकल।
1: WHO भी ये बोलता है कि जो रेगुलर फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करनी चाहिए?
2: उसमें है अलग अलग, जैसे जिसका रोल है, जिसका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी जरूरी है। जैसे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको करीब दिन में 3-4 बार खेलना है, एक्टिविटी करना है। घर की महिलाएं वो तो काम करती हैं, लेकिन जो सिटी की महिलाएं कुछ जो डिपेंड है नौकरानियों पर, उनके लिए थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, उनको भी थोड़ा करना चाहिए। जो कुछ भी एक्टिविटीज उनकी नजर में आए थोड़ा बहुत करना चाहिए, एकदम नहीं बैठना चाहिए। और जैसे कि ऑफिस वर्क के लोग हैं, उनको भी कम से कम सुबह शाम टहलना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग है, योगा वगैरह है, इस तरीके से अपना फ्लेक्सिबिलिटी लाके ना वो बहुत सारी बीमारियों से उससे बच सकते हैं।
1: प्रतिदिन अगर मैं समझना चाहूं या हमारे श्रोता समझना चाहें कि एक व्यक्ति को कम से कम कितना समय देने की जरूरत है?
2: कम से कम 2 घंटे तो देना चाहिए एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, हाँ, योगा, या तो अल्टरनेट सुबह शाम दे दें, या मॉर्निंग में 1-2 घंटा टाइम दे दें, तो उससे क्या है कि पूरी बॉडी वार्म अप एक तरह से हो जाता है बॉडी का।
1: अब अगर मैं, आप चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिजियोथेरेपी को अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि चोट लगने के बाद उपचार जो है वो फिजियोथेरेपी से किया जाता है, लेकिन खेलों में भी फिजियोथेरेपी की बड़ी भूमिका है, तो आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से फिजियोथेरेपी के रोल को समझाना चाहेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले अगर कोई खेलकूद कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई भी खेलकूद

0: बच्चे हैं या वृद्ध हैं या कोई भी घर का मेंबर अगर खेलकूद एक्टिविटीज कर रहा है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में एक मेथड होता है हम लोगों के पास, राइस। तो राइस का मतलब होता है, आर का मतलब रेस्ट करें, आई से मतलब होता है उसको आइस पैक लगाएं उसमें तुरंत, और उसके बाद एलिवेशन करें और कंप्रेशन करें,
1: नहीं, ये तो वो हो गई
0: है ना।
1: फिजियोथेरेपी के मेथड्स हो गए। मैं
0: जी
1: ये समझना चाह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी जो है, जैसे कहें कि चोट लग जाती है या किसी को दर्द है या किसी का, किन किन उनमें जो है फिजियोथेरेपी की भूमिका रहती है?
0: देखिए, फिजियोथेरेपी की हर एक केस में भूमिका है। जैसे गर्दन की समस्या हो गई तो गर्दन में, सर्वाइकल में, कमर में है, घुटने हैं, मांसपेशियों की समस्या है, न्यूरोलॉजिकल समस्या है, और कोई इंजरी हो जाती है, कोई लिगामेंट टियर हो गया या फ्रैक्चर हो गया या कोई भी समस्या है, वो सारे मस्कुलर डिसऑर्डर में फिजियोथेरेपी का बहुत विशेष रोल है।
1: आप जो बता रहे थे कि जैसे किसी को चोट लग जाती है तो क्या क्या मतलब उसमें करते हैं, जैसे किसी को मसल पुल हो गई या किसी को मूंछ आ जाती है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पे आप बता
0: जी
1: रहे थे
0: जी
1: क्या
0: जी
1: क्या करने की जरूरत होती
0: उसमें
1: है?
0: जैसे मैंने बताया कि रेस्ट करना है, राइस मेथड है। उसके बाद अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है, इंजरी ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी में होगा, कुछ मेडिसिन चलेंगी, कुछ फिजियोथेरेपी, तो वो रिकवर हो जाती है प्रॉब्लम।
1: कब मरीज को या जिसको चोट लगी है ये समझना चाहिए कि उसको एक डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है?
0: अगर फर्स्ट एड से काम नहीं चल रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तब जाके फिजियोथेरेपी कराना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट भी खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, लेकिन मैं आम आदमी की बता रहा हूँ। आम आदमी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता, तो फर्स्ट एड घर पर कर सकते हैं इतना। उसके बाद में अगर ज़रूरत लग रही है कि चोट नहीं सही हो रही है, 4-5 दिन का टाइम ले लें, 5 दिन के बाद में आप डॉक्टर से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट से।
1: अच्छा, अगर हम खिलाड़ियों के नज़रिए से बात करें तो
0: जी
1: खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और उनके चोटों के प्रबंधन में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका को किस तरह से देखा जाए?
0: देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट खिलाड़ियों के तो साथ में आजकल अपॉइंट होते हैं, इसीलिए रखा गया है, और फिजियोथेरेपी ही है जो बिल्कुल सारी इंजरी, चोट, अंदरूनी जो भी रिहेबिलिटेट करती है मसल्स को, चोट से लेकर पूरा रिकवरी तक और पूरा रिटर्न टू प्ले तक, जब तक एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो जाती पेशेंट की, खिलाड़ी की, तब तक फिजियोथेरेपी ही कराना है उसको।
1: और ये तो चोटों की बात सामान्य तौर से हम समझ रहे हैं, खेलों के लिए तैयारी जो होती है एक खिलाड़ी की, उसकी किसी कंपटीशन से पहले की जो इनिशियल प्रिपरेशन है,
0: जी जी
1: उसमें भी अगर देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका आती है।
0: उसमें भी यह है कि उसको ट्रेनर कराना पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन को, जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस करानी है, स्ट्रेचिंग कराना है,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: योगा कराना है, उसको रनिंग कराना है, और उसको साइकिलिंग करानी है, तो उसकी जॉइंट्स जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उससे उसके इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं, लिगामेंट टियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे फर्स्ट में ही अगर वो पहले प्रिपरेशन कर लेता है तो उसके इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें जैसे मसल्स की एक्टिविटी हो गई, जॉइंट्स की एक्टिविटी हो गई, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जॉइंट्स में, तो वो ये सब चीज़ें जो खेलने से पहले अगर वो कर लेगा स्पोर्ट्स पर्सन, तो
1: तो
0: वो
1: जब
0: उसको
1: खेल
0: इंजरी
1: के
0: के
1: दौरान
0: चांसेस
1: जो
0: नहीं
1: है
0: होंगे।
1: उसका
0: हाँ हाँ
1: जो
0: हाँ
1: एक परफॉर्मेंस लेवल है
0: वो अच्छा
1: वो अच्छा
0: रहेगा और
1: एनहेंस हो
0: इस
1: जाएगा।
0: इंजरी से बचेगा वो।
1: खेलते समय के खिलाड़ी को क्या क्या सामान्य तौर पे चोटें लगती हैं और उनकी वजहों पे अगर जाना चाहें तो उनकी वजह क्या होगी?
0: देखिए, ज़्यादातर चोट्स घुटने में लिगामेंट इंजरी होता है, मस्कुलर इंजरी होता है एंकल में, और जैसे कोई क्वाडिसेप्स पुल भी होती है, अभी शोल्डर में इंजरी होती है क्योंकि थ्रोइंग वगैरह करते हैं, तो ये कॉमन इंजरीज हैं, और स्पाइन की भी हो जाती है, कभी गिर गया पेशेंट कभी किसी तरीके से, तो स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ जाती है।
1: कारण अगर समझना चाहें तो क्या कारण होते हैं
0: कारण यही
1: मुख्यतः?
0: रहता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसने पहले एक्टिविटीज फिटनेस पर ध्यान नहीं
1: बिना
0: दिया,
1: वार्म अप के चला
0: बिना
1: गया।
0: वार्म अप के चला गया, कोई डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, और प्रॉपर एक एक्सपर्ट की राय नहीं ले रहा है, और अप्लायंसेस यूज नहीं कर रहा है। मेन है अप्लायंसेस, और आप तरीके से खेलेंगे और प्रिपरेशन करके खेलेंगे तो इंजरी के बहुत कम चांसेस होते हैं।
1: माने आपका कहने का तात्पर्य है कि ये जो खिलाड़ी की चोटें हैं उनको रोका भी जा सके, तो क्या वो तरीके हैं जिनसे इन चोटों से बचा जाए?
0: इनका यह है कि एक तो अच्छा प्रॉपर डाइट लें, वार्म अप एक्सरसाइजेज लें, और पौष्टिक डाइट लेना है, बैलेंस डाइट, पूरी नींद लेनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है खेलने से पहले, और स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज,
1: और
0: थोड़ा सा
1: इसमें
0: वो
1: इसमें
0: करना है।
1: एक चीज और जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि आप सही गाइडेंस में प्रशिक्षण लें
0: हाँ,
1: और
0: एक्सपर्ट।
1: जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: भी बहुत मायने रखता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: जैसे कमर की बेल्ट लगा ली आपने, नी कैप पहन
1: जी
0: लिया,
1: जी
0: है ना, तो वो चीज़ें आपको सेफ रखती हैं इंजरी से।
1: आमतौर पे देखा ये जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं खासतौर से युवा, तो
0: जी
1: वो बगैर स्ट्रेचिंग के जो है शुरुआत कर देते हैं, तो
0: जी
1: उनको जो है स्ट्रेचिंग में के प्रति लापरवाही जो है सी चोटों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है।
0: जी

0: खेलते समय मान लीजिए अचानक किसी खिलाड़ी को मोच आ गई
1: जी
0: या किसी की मसल पुल हो गई, तो फर्स्ट एड में जैसे आपने बताया था कि वो राइस जो मैकेनिज्म आपने बताई थी मेथड,
1: जी
0: तो वही एक वो है
1: वो
0: जो
1: फर्स्ट
0: आपको
1: एड है।
0: फर्स्ट
1: हाँ
0: एड के तौर पे
1: हाँ
0: लेने की
1: जी, उसके
0: ज़रूरत
1: बाद
0: होती
1: में
0: है।
1: अगर थोड़ा इंजरी ज़्यादा लग रहा है तो कुछ मेडिसिन, पेन किलर वगैरह, ऑइंटमेंट लगा के पेन किलर वगैरह दे सकते हैं उसको।
0: खिलाड़ी के लिए ट्रेनिंग लेते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करते वक्त, जो पोस्चरिंग है, करेक्ट पोस्चर,
1: जी
0: या जो एक्सरसाइज की या किन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज़ करने की जो टेक्निक्स हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी क्या खेलों में चोट का कारण बनती हैं?
1: बिल्कुल बनती हैं। अगर गलत तरीके से आप खेल रहे हैं या गलत पोस्चर की वजह से खेल रहे हैं तो भी इंजरी के चांसेस होते हैं। गलत तरीके से आपने झुक के वजन उठा लिया है ना, बिना बेल्ट के, बिना उसके, या बिना उसके आपने टेढ़े हो के या कुछ कर रहे हो या बैठ के सिटिंग में कुछ कर रहे हो, तो वो इंजरी के चांसेस बनते हैं उससे।
0: क्योंकि शरीर का जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है
1: जी
0: वो
1: जी
0: उस पे काम करता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप भले ही आप एथलीट हैं, प्लेयर हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको वो मुद्रा का ख्याल रखने की ज़रूरत
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग जो खेल से पहले प्रैक्टिस करते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं खिलाड़ियों के लिए। जैसे एक तो मसल्स में स्ट्रेंथ करते हैं वो पैदा, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, एक बॉडी में एंड्योरेंस डेवलप होता है, एक
0: बिल्कुल
1: स्पीड बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है ना, एक जोड़ों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे पेशेंट भाग रहा है तो इंजरी नहीं होगी उसमें। दूसरा एजिलिटी आती है, फुर्ती है ना,
0: ठीक।
1: एक आता है जो बैलेंस, संतुलन बनाए रखने की भी कैपेसिटी बढ़ती है इसमें, और कोऑर्डिनेशन होता है, हर चीज़ एक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं
0: वो आपस
1: उसमें
0: में एक एक
1: आपस में
0: एक
1: एक कोऑर्डिनेशन
0: हाँ
1: मेंटेन होना चाहिए,
0: समन्वय के हिसाब से काम
1: समन्वय
0: करते
1: के
0: हैं।
1: हिसाब से, कि एक अच्छे खेल के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से आपको पहले से प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, तब वो बचते हैं उसमें।
0: कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ये समय है एक आपकी पसंद के गीत को सुनवाने का, तो श्रोताओं को
1: जी
0: आप कौन सा गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गीत है कि सिर्फ तुम फिल्म का, पंछी सुर में गाते हैं।
0: पंछी सुर में गाते हैं, श्रोताओं को डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: कार्यक्रम में फिर से स्वागत है डॉक्टर साहब। आपने बात की थी सही पोषण की,
1: जी
0: तो कितना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए या जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं उनको संतुलित और सही पोषण दिया जाना है, कितना जरूरी है?
1: देखिए, हमारे जीवन में बैलेंस डाइट होती है। खाना हम लोग खाते हैं बैलेंस डाइट के हिसाब से चलेंगे। फॉर्मूला है हमारे मेडिकल साइंस में
0: जी
1: बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि सारे पौष्टिक आहार हमें लेने हैं, पूरे दिन में हमें सारी चीज़ें लेना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी पार्ट्स अलग अलग डिमांड करते हैं, अलग अलग सबके लिए ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हमें अपनी थाली में सारी चीज़ें रखनी है, दाल दही फ्रूट्स और सैलेड्स, है ना,
0: जी
1: दाल चावल और खाना, रोटी सब्जी, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो चीज़ खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, ड्राई फ्रूट्स खाएं, प्लेयर्स के लिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों से होके एक डिप्रेशन से भी बचना है, किसी टेंशन से, डिप्रेशन से भी बचना है, ऐसे माहौल
0: खेलों
1: से
0: में
1: बचना है।
0: खेल जो है

0: किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं।
1: जी
0: तो क्या वो ऐसे चीज़ें हैं जो जो जो मानसिक तौर पे खेल खेल जो है आपके आपकी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं?
1: उसके
0: जैसे
1: लिए आप अपने जो अच्छे फ्रेंड सर्किल हैं, आपकी जो पॉजिटिव बात करते हैं, आपसे पॉजिटिव माहौल बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें, म्यूजिक अपना पसंद है म्यूजिक सुनें, है ना, और खूब हंसें बोलें एंजॉय करें, अपना जो भी इंटरटेनमेंट का उनको अच्छा लगता है उस चीज़ में जाएं, तो वो मेंटली प्रेशर से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उनको बचाते हैं वो चीज़।
0: एक कॉलेज स्तर पर या स्कूल स्तर पर अगर हम देखते हैं तो बच्चे बहुत स्पोर्ट्स शुरुआत में परस्यू करते हैं, तो ऐसे युवाओं को जो अपकमिंग हैं जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर भी बनाया जा सकता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि खेल हर आदमी को खेलना चाहिए, चाहे वो अपना कैरियर बनाए या नहीं भी बनाए। एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जीने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम होती जा रही है, डे बाय डे हम देखते जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट डे बाय डे हमारे पास आ रहे हैं। मैं जिला अस्पताल में हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, और लेडीज़ हैं 30-35 साल की, उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं, वृद्ध लोग हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारा रीज़न हम लोग सोचते हैं कि फिजिकली एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, क्योंकि इसका गैजेट्स का ज़माना चल रहा है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, ये सारी चीज़ें, तो आदमी फिजिकली एक्टिविटी कम कर रहा है, बैठे बैठे खा रहा है बैठे बैठे, तो इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, और मसल्स पावर कम होती है, और बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन ख़राब होता है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स वीक होने लगते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी वजह से, और हमारा मेंटल डिसऑर्डर भी आने लगते हैं बैठे बैठे, फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा युवाओं से कि आप अपना करियर भी बनाइए, खेलिए कूदिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आइए और मैदान में जाइए। और आजकल, पहले हम लोगों के ज़माने में इतना खेलते थे कि आज हम उसी की वजह से फिट हैं, और आज उसी की वजह से इम्यूनिटी से हम लोग जी रहे हैं।
0: ठीक बात।
1: तो ये है कि हमारे जीवन में इसका बहुत रोल है। इसके आगे अगर किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें आप करियर भी बना सकते हैं, और नहीं भी इंटरेस्ट है तो अपनी हेल्थ बनाइए।
0: इवन ये तो खिलाड़ियों की बात हो
1: हाँ
0: गई, अगर हम देखें सामान्य तौर पे
1: जी
0: एक कोई अच्छा अगर बच्चा है और वो परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है तो
1: जी
0: उसको भी फिजिकल फिटनेस या कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज वो भी उसको भी मदद करती हैं, जिसको हम स्मरण शक्ति बोलते हैं वो भी
1: हाँ,
0: अच्छी
1: मेमोरी
0: होती है,
1: मेमोरी
0: उसका
1: बढ़ती है
0: जो
1: बच्चों की।
0: कंसंट्रेशन है।
1: बस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उस फील्ड में जाना हो तभी हम खेलेंगे। आप हेल्दी रहने के लिए अपने, मान लो पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छा, चाहे बीटेक कर रहे हैं बीबीएस कर रहे हैं, आपके मेंटल प्रेशर अच्छा रहेगा, उससे मेमोरी अच्छी रहेगी, तभी तो आप पढ़ पाएंगे।
0: ठीक बात।
1: दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ओल्ड एज पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, जो घरों पर बैठ जाते हैं, एकदम से एक्टिविटीज़ उनकी बंद हो जाती है, तो उनके लिए खेल कूद एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर वो करेंगे तो उनके हार्ट में भी सुधार होगा, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी उससे, और थोड़ा
0: फिजिकल
1: बहुत।
0: फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि
1: हाँ
0: बुढ़ापे में या जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वही कम होती हैं, और जिसकी वजह से आपको
1: जल्दी
0: तमाम
1: तमाम
0: बुढ़ापा भी
1: बीमारियां
0: जल्दी
1: घेर
0: आ
1: लेती हैं,
0: जाता
1: जल्दी बुढ़ापा भी आता है।
0: है।
1: आपने देखा होगा कि जो पर्सन है, जो वर्किंग पर्सन है, उनका इतना जल्दी नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद में वो एज फैक्टर
0: इमीडिएटली
1: उनका
0: बहुत
1: इमीडिएटली
0: जल्दी
1: बहुत जल्दी
0: डिक्लेम
1: डाउन
0: होता
1: हो
0: है।
1: जाते हैं।
0: हाँ
1: तो ये है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, स्विमिंग करना है, तेज़ तेज़ फास्ट वॉकिंग भी कर
0: वॉकिंग
1: सकते
0: है।
1: हैं,
0: जी,
1: जो योगा में एक्सपर्ट हैं वो योगा कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो, उससे अपने आप को फिट रख सकते हैं।
0: आपने नींद की बात की थी
1: जी
0: कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नींद भी बेहतर आएगी, और आप जब
1: जी
0: नींद बेहतर
1: जी
0: आएगी तो आपके जो बहुत सारे मानसिक जो अवसाद है या
1: जी
0: तनाव
1: जी
0: है
1: जी जी
0: वो भी नियंत्रित होता
1: जी
0: है।
1: जी जी आजकल ये मोबाइल ज़्यादा रात रात तक देख रहे हैं लोग, नींद इसीलिए तो डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद ना आने से फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी बढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए इसको करना ज़रूरी है सबके लिए।
0: डॉक्टर साहब, आजकल का जो युवा है, मॉडर्न यूथ, वो जिम कल्चर से बहुत प्रभावित है,
1: जी
0: और ठीक है शारीरिक गतिविधियां अपनी जगह हैं, स्पोर्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो जिम कल्चर है उसको ध्यान में रख के उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसको?
1: मेरा मानना ये है कि अगर वो अपने घर पे काम करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, अपने आप को एक्टिव रखें हर चीज़ में, तो जिम की ज़रूरत नहीं है, और
0: कहने का
1: अपने खान
0: अर्थ
1: पान
0: ये है
1: पे
0: कि
1: नियंत्रण
0: आपको
1: रखें।
0: शारीरिक गतिविधि अगर करनी है तो
1: हाँ
0: जिम जो है एक रास्ता हो सकता है,
1: हाँ
0: लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है।
1: समय

0: नहीं
1: नौकरी
0: है।
1: पेशा हैं और
0: हाँ
1: उनको एक थोड़ा जो स्लॉट मिला है उसमें
0: बस
1: वो जिम में जाके
0: उसमें जा
1: उसको
0: सकते हैं,
1: कर सकते हैं,
0: ऑप्शन में रख
1: ऑप्शनल है
0: सकते हैं,
1: वो।
0: ऑप्शनल
1: ऐसा
0: है,
1: नहीं है कि आप,
0: कंपलसरी नहीं है।
1: हाँ आप जो है जिम के जरिए ही अपनी
0: नहीं,
1: फिटनेस बनाएं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: जरूरी
0: बिल्कुल
1: नहीं है,
0: नहीं
1: जो
0: है।
1: कि आजकल के मॉडर्न यूथ जो
0: नहीं
1: है
0: नहीं ये गलत धारणा
1: उसको।
0: है लोगों में, आजकल के
1: जी
0: युवाओं में, तो मैं
1: ठीक,
0: कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि ऐसा ना समझे कि टोटल उसी पर डिपेंड रहना है।
1: डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा कि

0: डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि डिजिटल जमाना है, इंटरनेट का युग है, तो कई दफे ऐसा देखा जाता है बहुत से युवा इंटरनेट पे देखे एक्सरसाइजेस और कूदना शुरू कर देते हैं, व्यायाम शुरू कर देते हैं, उसको आप किस तरह से डिफाइन
1: नहीं,
0: करेंगे?
1: ये चीज़ गलत हो रही है आजकल। इससे इंजरियाँ बढ़ रही हैं और लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हमने यूट्यूब पर देखे एक्सरसाइज कर लिया, हमने यूट्यूब पर देखे ये कर लिया, ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया, ये और बढ़ा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा लोगों से कि आप एक्सपर्ट की राय लें। और यूट्यूब पर हाँ जनरली एक्सरसाइज आती हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्लिनिकली प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से आप पूछिए, सारे उससे आप सलाह से काम करिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंजरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं उसमें।
0: क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये सब चीज़ें एक प्रॉपर गाइडेंस में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जैसा कि हम सब देखते हैं, बहुत सारे गेम्स फॉलो करते हैं आजकल के युवा, और हर खिलाड़ी हर टीम के साथ में उनके फिटनेस कोचेज रहते हैं। वो
1: जी
0: शायद इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंस उनकी इसीलिए है कि वो उनकी प्रॉपर गाइडेंस में उन चीज़ों को करते हैं। तो आपको ऐसे ही इंटरनेट पे देख के कोई भी एक्सरसाइज
1: नहीं,
0: शुरू नहीं करनी
1: मैं
0: है।
1: आपको एक चीज़ और बताऊं। मैं एक लब स्टेडियम गया था बच्चों के लिए, तो अब मैंने वहां पर ये कह रखा है कि बच्चे मेरे पास आए किसी भी एडवाइस के लिए, मैं फीस भी नहीं लेता, और बाकी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप मिल सकते हैं, कमरा नंबर 15 में बैठता हूं मैं। तो एडवाइस लेने के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पैसे की या डॉक्टर की फीस के डर की वजह से आप गलत एक्सरसाइज करके अपनी बीमारी को मत बढ़ाइए, ये मेरा निवेदन है।
0: क्योंकि डॉक्टर साहब, आजकल की जो पीढ़ी है वो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बहुत जूझ रही है,
1: जी
0: तो ये जो खेल हैं या नियमित शारीरिक व्यायाम है वो जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने में भी तो सहायक है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बीपी हैं, शुगर हैं, और वेट ओवरवेट है, थायराइड है ना, नींद है, जो मेमोरी लॉस हो रही है लोगों की, नींद है डिस्टर्ब हो रही है, इन सारी चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, खेलकूद का ही रोल है, इसी चीज़ से ये सुधारी जा सकती हैं।
0: ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के जो श्रोता हैं और खास तौर से युवा हैं,
1: जी
0: उनके लिए आप क्या विशेष संदेश आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए देना
1: देखिए,
0: चाहेंगे?
1: हमारे ग्रामीण लोगों में, भाइयों में तो इतना एक्टिविटीज़ होता है, खेती बाड़ी का काम होता है उनके यहाँ, वो तो करते हैं बेचारे, तो उनमें इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन उनको लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा ग्रामीण लोगों के लिए, कि वो आजकल क्या है कि उल्टे सीधे तरीके से वेट उठा रहे हैं, तो उसमें इंजरी के चांसेस हो रहे हैं। जैसे कि वजन उठा लिया भारी, कोई कट्टा बोरी उठा लिया, कभी कोई खेती में से कोई सामान ढोके ला रहे हैं, वो सिर पर ढक के लाए तो गर्दन में झटका लग गया, कमर में झटका लग गया, घुटने में मोच आ गई, मैट से फिसल गए खेत में काम करते करते। तो वो चीज़ें काम करिए, लेकिन थोड़ा संभाल के करिए। और जैसे ही अगर दिक्कत आती है, तो मैंने देखा है कि थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस की कमी रहती है ग्रामीण लोगों में, तो वो अगर चोट भी लग जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं टाइम से,
0: सकुचाते हैं।
1: सकुचाते हैं कि अरे क्या जाएंगे, और आलस भी कर जाते हैं खर्चे की वजह से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बीमारी को ना बढ़ाएं, एक्सपर्ट की राय जरूर लें, डॉक्टर की फीस का वो है, सरकारी हॉस्पिटल में हमारे पास आए, वहाँ कोई फीस नहीं है, इतनी सारी फैसिलिटी है, तो
0: ठीक
1: सही
0: है,
1: समय पर सही सलाह लें, ताकि बीमारी से बचा जा सके और बड़ी इंजरियों से बचा जा सके।
0: आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के मौके पर डॉक्टर साहब, आपने जो खेल, स्वास्थ्य, फिटनेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित शर्मा से अनेंद्र सिंह की बातचीत। विषय था खेल कूद, स्वास्थ्य और फिटनेस। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहां पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा है। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स

0: इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
1: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप SSB एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
0: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
1: जी जी।
0: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूं कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गांव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
1: जी जी।
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूं तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी, जी।
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खासतौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो, किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के, लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक

0: एक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है,
1: जी
0: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहां पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए,
1: ओके
0: उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं,
1: ओके
0: तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर। और वहां पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है,
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया है।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप, सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं। जब भी स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्यर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्यर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है

0: लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी, वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए, या आर्मी के अगेंस्ट, या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट, अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना, इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी जी
0: हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे, या या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ

0: मैं जरूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी
0: चाहूँगा कि
1: प्लीज
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई।
1: जी
0: तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए।
1: ओके
0: नाम लेना चाहूँगा मैं
1: जी
0: उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई।
1: ओके
0: इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से, अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके
1: जी
0: बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन।
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए,
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके, जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी।
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी,
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक
1: जी
0: कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे चल के,
0: बिल्कुल
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीजी में जो ट्रेनिंग आप दे रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से

0: आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे। बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
0: जी।
1: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
0: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है।
0: जी।
1: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं एसएसबी के, ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
1: बिल्कुल,
0: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू आर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं?
1: हाँ,
0: शादी
1: बिल्कुल
0: से
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप
0: जी,
1: वो कहिए,
0: पत्र, ओके,
1: तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और
0: ओके,
1: वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं
1: जी।
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी,
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे दे स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहां पे शुभारंभ कर रहा हूं। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहां भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहां पढ़ना चाहूं, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में
1: अभी जो

0: मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है। तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली DDO का कार्य रहता है, सेकेंड इन कमांड के पास,
1: जी
0: ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको DIG लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। तो उसमें से एक मैं भी हूँ, सेकेंड इन कमांड वहाँ पे,
1: जी
0: और ट्रेनिंग और कुछ DDO वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा
1: राइट
0: हूँ।
1: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का। साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूं, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन
0: अच्छा,
1: लिख रहे हैं, आप
0: ओके
1: पहचान गए होंगे।
0: जी,
1: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम
0: धन्यवाद
1: उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों।
0: है यश का
1: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं।
0: जी।
1: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर ये।
0: जी
1: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है, दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव।
0: जी जय हिंद बाबूलाल।
1: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहां पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है, एंड आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन
0: जी
1: दोनों आपके बीच आते हैं, यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है।
0: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं। कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स, अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी
1: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो
0: जी
1: मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए, मैं ऐसी कामना कर रहा हूं। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में।
0: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
1: बट
0: बट
1: सुझाव अच्छा है।
0: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा,

0: और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
1: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फौज की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है।
0: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है,
1: जी
0: उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
1: जी
0: उसके अलावा उन्हें जेएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
1: ऑल राइट। टीपीटी सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा
0: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
1: है। ओके,
0: जी
1: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते
0: बिल्कुल
1: रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
0: जी
1: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर, उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSB सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं।
0: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इंप्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख
1: तो
0: पाएंगे।
1: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, ये नहीं कि कंप्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
0: नहीं
1: AI का
0: नहीं
1: जमाना आ गया,
0: वो
1: आप
0: तो
1: लोग
0: नहीं।
1: AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में।
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं,
1: जी जी जी
0: बट ये है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
1: एब्सोल्युटली।
0: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: बिल्कुल,
1: हम
0: हम भी
1: बिल्कुल
0: तैयार हैं। बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल
1: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमां में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा।
0: धन्यवाद।
1: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से

0: भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें। सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से।

0: साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूं।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज एमटी मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस के खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5:05 हुए हैं, समय है कार्यक्रम वेव फ्रंट का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सुनते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा 5:30। इसमें चर्चा रहेगी क्रांतिकारी विरासत पर। वार्ता में सुनिएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV जानकारी और बचाव। वार्ताकार होंगी डॉक्टर शुभ्रा बंसल। केस्ट वर्ड में सुनेगा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल।

एक कपास की फसल के कीट और उनका नियंत्रण। वार्ताकार होंगे सुरेश चंद्र राजपूत, साथी होगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम मजदूर मंडल का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें आज चर्चा रहेगी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर। साथी सुनिएगा ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और मनोरंजन कराया जाएगा आपका फिल्म संगीत से। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनिएगा वार्ता आजादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रभा शर्मा।

मेरी माटी मेरा देश, ये कंपेयर कार्यक्रम आप सुनिएगा शाम 7:31 पर। एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत।

हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम में रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा कंट्री वाइड इनसाइट्स। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुनिएगा काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गीतांजलि। प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा और संचालन रहेगा डॉक्टर राजकुमार शर्मा का। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा शुभ्रा तेलेगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। अब समय हो चला है भक्ति परक फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर संध्या का। तो सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

0: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनते हैं पुकार फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

पुकार फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथी को। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा था AR रहमान ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनते हैं अमित त्रिवेदी को फिल्म केदारनाथ में। गीत संगीत है अमित त्रिवेदी का।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभी आपने सुना अमित त्रिवेदी को। फिल्म का नाम था केदारनाथ। गीत संगीत भी था अमित त्रिवेदी का। इसके साथ ही भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं को पुनः याद दिला दें कि रात्रि 10 बजे से आप सुन सकते हैं हमारी खास काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गीतांजलि। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा और संचालन रहेगा डॉक्टर राजकुमार शर्मा का। रात्रि 10 बजे। और अब समय हो चला है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: का बलिदान दिया है। उनका त्याग और साहस आज भी हमें देश प्रेम की प्रेरणा देता है। ऐसे ही अमर शहीदों को याद करते हुए ये प्रसिद्ध कविताएं कही जाती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, तो इसी से रिलेटेड है आपका आज का सवाल। क्या बता सकते हैं ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। ये बात हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। धन, सफलता और सुख तभी मायने रखते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ना केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है, बल्कि जीवन के हर चैलेंज का सामना बेहतरीन ढंग से कर सकता है। लेकिन साथियों, आज के समय में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, जिनमें वायरल इन्फेक्शन सबसे आम है। इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसके सिम्टम्स को पहचान सकें, समय पर डॉक्टर से इलाज करवा सकें और खुद को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो वायरस नाम के बहुत ही छोटे कीटाणु से होती है। वायरस इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। जब कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, तो वो शरीर के सेल्स के अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसी प्रोसेस से बीमारी पैदा होती है। वायरस संक्रमण बहुत आम है और ये साधारण सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों तक का कारण बन सकता है। दोस्तों, वायरस कई तरीकों से फैल सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो उसके मुंह और नाक से निकली छोटी बूंदों के माध्यम से वायरस दूसरे लोगों में ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से या दूषित जगह को छूने से, गलत खाना या पानी कंज्यूम करने से या मच्छर के काटने से भी वायरस फैल सकता है। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार, सर दर्द, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द, कमजोरी वगैरह दिखाई देती है। कई बार सिम्टम्स हल्के होते हैं और व्यक्ति कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में बीमारी गंभीर भी हो सकती है। जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। शरीर की रक्षा करने वाले सेल्स वायरस को पहचान कर उससे लड़ते हैं और विशेष पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी वायरस को कमजोर करने और खत्म करने में मदद करती है। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन का इलाज मुख्य रूप से शरीर को आराम देने और सिम्टम्स को कम करने पर आधारित होता है। पेशेंट को पर्याप्त आराम करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। बुखार या दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। कुछ विशेष वायरस के लिए एंटीवायरल दवाएं भी उपलब्ध होती हैं। साथियों, वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हाथ धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह को ढकें, बीमार लोगों से दूर रहें और हाँ दोस्तों, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मच्छरों के फैलने से भी कई बीमारियां हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखिए कि मच्छरदानी का यूज़ करें और अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। साथियों, अंत में यही कहा जा सकता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखी जीवन की असली कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ शरीर में ही अच्छी जीवन शैली का वास होता है। अच्छा दोस्तों, इन्हीं वायरल इन्फेक्शंस में एक महत्वपूर्ण इन्फेक्शन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। HPV वायरस से कुछ मस्से भी हो सकते हैं और कुछ गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जानकारी और बचाव। वार्ताकार है डॉक्टर शुभ्रा बंसल।
1: आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर केवल एक चिकित्सा विषय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य चुनौती है। गर्भाशय का निचला भाग जो योनि से जुड़ा होता है, वह गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। इसी भाग में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। भारत आज भी विश्व में सर्वाइकल कैंसर से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग युवा साथियों। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, हमारे देश के अनेक वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए

खोजों के अनुसार अधिकांश मामलों में इसका संबंध एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण से होता है। संक्रमण के बाद कैंसर विकसित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए समय पर टीकाकरण और नियमित जांच से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकॉन के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1.25 लाख नए मामले सामने आए तथा लगभग 80,000 महिलाओं की मृत्यु इस रोग के कारण हुई। यह गंभीर बीमारी भारत में महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसर रोगों में से है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है और देश में होने वाले एचपीवी संबंधित कैंसर रोगों का लगभग 88% भाग सर्वाइकल कैंसर का है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्थापित हो चुका है कि लगभग 99% सर्वाइकल कैंसर मामलों का सीधा संबंध लगातार बने रहने वाले उच्च जोखिम युक्त एचपीवी संक्रमण से होता है। विशेष रूप से एचपीवी 16 और एचपीवी 18 प्रकार के वायरस सर्वाधिक जिम्मेदार पाए गए हैं। आईएआरसी के अनुसार विश्व स्तर पर एचपीवी से होने वाले कैंसर रोगों का सबसे बड़ा भाग सर्वाइकल कैंसर है और भारत में एचपीवी जनित कैंसर रोगों का बोझ विश्व के कुल एचपीवी संबंधित कैंसर रोगों का लगभग 24% है। भारत में युवा महिलाओं पर किए गए आईएआरसी के बहुराज्यीय अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 36% महिलाओं में अध्ययन अवधि के दौरान कम से कम एक प्रकार का एचपीवी संक्रमण पाया गया है। हालांकि अधिकांश संक्रमण स्वतः समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ संक्रमण वर्षों तक बने रहने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर की चुनौती केवल बीमारी की नहीं बल्कि जागरूकता, टीकाकरण और समय पर स्क्रीनिंग की भी है। क्योंकि कैंसर विकसित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए एचपीवी वैक्सीन और नियमित जांच द्वारा अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है। एचपीवी वैक्सीन शरीर को एचपीवी वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। यह कैंसर का उपचार नहीं है बल्कि कैंसर की रोकथाम का एक प्रभावी उपाय है। भारत में उपलब्ध प्रमुख एचपीवी टीकों में सर्वावैक, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9 शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कि यह टीका किस आयु में लगवाना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं में एचपीवी वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावी होती है। पहले इस आयु वर्ग में सामान्यतः 2 खुराकें दी जाती थी, लेकिन हाल में वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि एक खुराक भी कई बालिकाओं में 2 खुराक के समान प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। इसी कारण अब एकल खुराक टीकाकरण को भी महत्वपूर्ण और प्रभावी विकल्प माना जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। जिन महिला अथवा बालिकाओं की प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है, जैसे एचआईवी से प्रभावित महिलाएं अथवा बालिकाएं, तो उनके लिए कम से कम 2 तथा जहां संभव हो 3 खुराकों की आवश्यकता बनी रहती है। समय पर टीकाकरण से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। अब बात आती है कि यह टीका कहाँ लगवाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कि एचपीवी वैक्सीन सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल यानी इमरजेंसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निजी अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक पर उपलब्ध होती है। उपलब्धता समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए टीकाकरण से पहले निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से जानकारी अवश्य लें। सरकारी कार्यक्रमों और राज्यों के अनुसार टीके का मूल्य अलग अलग हो सकता है। कुछ सरकारी योजनाओं में पात्र बालिकाओं को टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निजी क्षेत्र में कीमत वैक्सीन के प्रकार के अनुसार बदलती है। अस्पताल, शहर और परामर्श शुल्क के अनुसार लागत में अंतर हो सकता है। भारत में एचपीवी वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम NIS, जिसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह टीका सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होता है। इसमें मुख्य रूप से 14 वर्ष की किशोरियों को लक्ष्य करके टीका लगाया जाता है। एचपीवी टीका लगवाने के लिए सर्वप्रथम पंजीकरण

0: अनिवार्य है, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्कूल आधारित सत्रों में स्वास्थ्य टीम द्वारा और कई स्थानों पर यूविन डिजिटल पोर्टल या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। HPV टीकाकरण स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है और टीका लगवाने से पहले अभिभावक की सहमति अनिवार्य है, जो कि लिखित अथवा डिजिटल रूप में हो सकती है। ध्यान रखें कि टीकाकरण के बाद थोड़ी देर स्वास्थ्य केंद्र में ही रुकें और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। टीकाकरण के बाद हल्का दर्द अथवा सूजन होना सामान्य बात है। यदि कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो घबराएं नहीं और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित चिकित्सक को जानकारी दें। HPV वैक्सीन लेने के बाद भी सर्वाइकल कैंसर की नियमित स्क्रीनिंग आवश्यक है। टीका महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सभी संभावित जोखिमों को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, इसलिए समय समय पर जांच कराना आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर प्रारंभिक अवस्था में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता। स्क्रीनिंग द्वारा कैंसर बनने से पहले होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है, जिससे समय रहते उपचार संभव हो सके। स्क्रीनिंग कराने के लिए महिलाएं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज या चयनित निजी अस्पताल एवं प्रयोगशाला में जा सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को जिन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए उनमें शामिल है मासिक धर्म के बीच में या बिना समय के खून आना, रजोनिवृत्ति या मीनोपोज के बाद फिर से खून आना, योनि से बदबूदार या असामान्य तरह का स्राव होना, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना। यदि किसी महिला को इस तरह के लक्षण अनुभव होते हैं तो वह सतर्कता पूर्वक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। हालांकि यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक अवस्था में कोई भी लक्षण हो सकता है ना हो, इसलिए नियमित स्क्रीनिंग अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रोताओं, आज की इस वार्ता को अंत की ओर लाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह उन कैंसर रोगों में से है जिनकी रोकथाम संभव है। किशोरियों का समय पर HPV टीकाकरण, महिलाओं की नियमित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और सही स्वास्थ्य जानकारी, ये तीन कदम हजारों माताओं, बहनों एवं बेटियों का जीवन बचा सकते हैं, जिसके लिए यह आवश्यक है कि परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य कर्मी और समाज एकजुट होकर इस बीमारी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाएं। आइए हम साथ मिलकर एक संकल्प लें कि हर बेटी का टीकाकरण, हर महिला के समय पर जांच, सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत की ओर एक मजबूत कदम।
1: साथियों, आपका युववाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जानकारी और बचाव। वार्ताकार थी डॉक्टर शुभ्रा बंसल। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: दोस्तों, खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ये ना केवल हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सहयोग और खेल भावना की भी शिक्षा देते हैं। खेल जीवन में उत्साह, ऊर्जा और आनंद का संचार करते हैं। यही कारण है कि विश्व भर में खेलों को विशेष महत्व दिया जाता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इनमें राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दुनिया की बड़ी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दुनिया की बड़ी खेल प्रतियोगिताएं हैं। इनमें कई देशों के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। इन खेलों से देशों के बीच दोस्ती, सहयोग और खेल भावना बढ़ती है। राष्ट्रमंडल खेलों की

0: में भारतीय खिलाड़ियों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों ही महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं। दोनों प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने देश का सम्मान बढ़ाने का अवसर देती है। इन बड़े खेल आयोजनों के महत्व को देखते हुए हर वर्ष 11 जून यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करना है। साथियों, खेल हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना का विकास होता है। यही गुण राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में भी देखने को मिलते हैं, जहां प्लेयर्स खेल भावना के साथ कंपटीशन करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। अंत में दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल केवल खेल के कॉम्पिटिशन ही नहीं है, बल्कि ये देशों के बीच दोस्ती, एकता और सहयोग का संदेश भी देते हैं। इसलिए इन दोनों खेलों का विश्व में बहुत बड़ा महत्व है। अब साथियों, आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्रेरणादायक गीत।
1: इंडिया इन डीप ट्रबल नाउ, हैविंग लॉस्ट टू मैचेस इन अ रो।
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने नहीं आऊंगा।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू स्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

0: सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, इतिहास में दर्ज संघर्ष सिर्फ घटनाएं ही नहीं बल्कि वो नए विचारों की शुरुआत है जिन्होंने समाज को बदलने की दिशा दी। हर समय कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने गलत व्यवस्था का विरोध किया और बदलाव की नींव रखी। इन्हीं प्रयासों से आगे चलकर एक ऐसी धारा बनी जो आने वाली जनरेशंस के लिए प्रेरणा बन गई। इन्हीं प्रेरणादायक संघर्षों और बलिदानों की कहानी हमें आज भी आगे बढ़ने की सीख देती हैं। ऐसे महान योगदानों को हम क्रांतिकारी विरासत के रूप में जानते हैं। क्रांतिकारी विरासत का मतलब उन महान देशभक्तों की याद और उनके कामों से है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। उन्होंने ये दिखाया कि देश की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप में आंदोलन चलाए, योजनाएं बनाई और लोगों को आज़ादी के लिए जागरूक किया। उन्होंने जेल, कठिनाई और फांसी को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। इस विरासत की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं दोस्तों क्या है? वो है देशभक्ति, साहस, बलिदान और एकता। इन वीरों ने हमें सिखाया है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं में जोश और देश प्रेम की भावना पैदा की जिससे स्वतंत्रता आंदोलन और मजबूत हुआ। आज भी क्रांतिकारी विरासत हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ईमानदार रहें और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। ये विरासत हमें ये भी याद दिलाती है कि फ्रीडम आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष और बलिदान छिपा है। इसलिए हमें अपने देश की रक्षा और विकास के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाने वाले महान देशभक्तों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी भी एक प्रमुख क्रांतिकारी, कवि और देशभक्त थे। उनका जन्म 11 जून यानी आज ही के दिन ईयर 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। वो बचपन से ही देशभक्ति की भावना रखते थे। वो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। वो काकोरी ट्रेन रॉबरी जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़े थे जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना जैसी प्रेरणादायक कविता लिखी जो आज भी लोगों में जोश और प्रेम भर देती है। उनकी जयंती पर लोग उन्हें याद करते हैं और उनके बलिदान को सम्मान देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए सच्ची लगन और साहस बहुत जरूरी है और हमें हमेशा अपने देश के लिए ईमानदार और समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं को जागरूक किया कि वो अन्याय और गुलामी के खिलाफ खड़े हों और अपने देश के लिए कुछ बड़ा काम करके दिखाएं। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और सच्ची देशभक्ति सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी दिखानी चाहिए। इन क्रांतिकारियों का जीवन हमें ये सिखाता है कि बलिदान कभी बिना साहस और संघर्ष के संभव नहीं होता। उनका त्याग केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हमारे विचारों और कार्यों को दिशा देने वाली शक्ति है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी के साथ ये देशभक्ति सॉन्ग।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।

अच्छा साथियों, आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो हमने आपसे पूछा था कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। इस पंक्ति के रचनाकार जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले हमारे युवा श्रोताओं के लिए एक छोटी सी जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम के दौरान हम बात कर रहे थे वायरल और HPV इन्फेक्शंस की, जो हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है। अब ध्यान देते हैं थोड़ा मेंटल और इमोशनल हेल्थ की तरफ भी। हमने देखा है कि आजकल के युवा ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में फील गुड हॉर्मोन्स क्रिएट करती है, जिससे हम अपनी सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इसी के साथ कार्यक्रम युवावाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। अब समय हो चला है ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीलोक का, तो सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीलोक।

किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, आज हम बात करेंगे कृषि निवेश पोर्टल की, पर उससे पहले स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीलोक में, और साथ ही स्वीकार करें राम राम अपनी रेडियो सखी शोभना की। किसान साथियों, कृषि निवेश पोर्टल नाम सुनने में भले ही थोड़ा नया लगे, लेकिन इसका उद्देश्य किसानों का काम आसान बनाना है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती केवल खेत में मेहनत करने का नाम नहीं है। अच्छी फसल के लिए समय पर बीज, खाद, सिंचाई, कृषि यंत्र और सही जानकारी की भी जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान को किसी योजना की जानकारी समय पर मिल ही नहीं पाती है, या फिर जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में कृषि निवेश पोर्टल किसानों और सरकारी सेवाओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करता है। किसान भाइयों, इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों तक खेती से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं को आसानी से पहुंचाना है। इसके माध्यम से किसान विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा पात्रता के अनुसार लाभ लेने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं।

मान लीजिए किसी किसान को उन्नत किस्म का बीज लेना है, या फिर किसी कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी चाहिए, तो पहले उसे अलग अलग कार्यालयों में जाकर जानकारी जुटानी पड़ती थी। लेकिन अब डिजिटल माध्यम से ये जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होती है, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो रही है। आज का दौर तकनीक का दौर है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम मोबाइल से बिजली का बिल जमा करते हैं, बैंक का काम करते हैं, या फिर अपने परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, उसी प्रकार खेती किसानी में भी तकनीक का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि निवेश पोर्टल इसी बदलाव का एक हिस्सा है। किसान भाइयों, सरकार की अनेक योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। लेकिन इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब किसान इनके बारे में जागरूक हों। इसीलिए ये जरूरी है कि हम खेती से जुड़ी नई जानकारियों और डिजिटल सेवाओं को समझें, उनका उपयोग करें। गांव में अक्सर देखा जाता है कि कुछ किसान नई तकनीक अपनाने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि ये काम कठिन होगा या उनके लिए नहीं है। लेकिन भाइयों, सच यही है कि जब हम नई चीजें सीखते हैं ना, तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। आज गांव में भी मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कृषि से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाना समय की मांग है। आप खुद सोचिए, जब आपके दादा दादी या फिर आपके पिताजी जिस टाइम पर वो खेती करते थे तब समय और था, पर आज आप खेती करते हैं तो आपके पास मौसम की जानकारी भी होती है, आपके पास नई तकनीक भी है और आपको ये भी पता है कि मिट्टी की देखभाल कैसे करनी है। तो ये सब क्या है? ये सब डिजिटलाइजेशन ही तो है, तकनीक ही तो है। जिसके बारे में आप जागरूक होंगे तो उतना ही काम आपका आसान होगा और अच्छी होगी, क्योंकि हर किसान यही चाहता है कि जो उसकी पैदावार है, जो उसका उत्पादन है, वो उसे अच्छा मिले और स्वस्थ मिले। किसान भाइयों, यदि किसान को पोर्टल के उपयोग में कोई भी कठिनाई आती है तो आप कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्र, जन सेवा केंद्र या फिर अपने क्षेत्र के कृषि कर्मचारियों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सीखने की इच्छा हो तो कोई भी नई व्यवस्था कठिन नहीं रहती है। साथियों, खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल मेहनत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। और सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हमारे पास सही जानकारी हो। इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में जानकारी भी खेती का एक महत्वपूर्ण निवेश है। तो किसान साथियों, आपसे यही कहना चाहते हैं, यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ जानकारी और तकनीक को भी अपनाना होगा। कृषि निवेश पोर्टल जैसी सुविधाएं हमारे किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। आइए हम स्वयं जागरूक बने और अपने आसपास के किसानों को भी जागरूक करें। किसान साथियों, याद रखिए कि आधुनिक किसान वही है जो खेत के साथ साथ जानकारी से भी जुड़ा रहता है। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे, आप इस पे जरूर चर्चा करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। तो चर्चा तो हो गई, अब करवाते हैं आपका मनोरंजन, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारा कार्यक्रम यही है कि आपको जानकारी देना और आपका साथ में मनोरंजन भी करवाना। तो आइए अब सुनते हैं भुवनेश कुमारी की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, कपास ये एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार के लिए कीटों से समय पर बचाव और नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी जैसे कीट काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और इन कीटों की पहचान, रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन के बारे में आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ सुरेश चंद्र राजपूत। तो आइए सुनते हैं उनकी वार्ता, कपास की फसल पर कीट नियंत्रण।
1: कपास

की फसल के कीट एवं उनका नियंत्रण। कपास एक व्यापारिक नकदी फसल है, परंतु इसमें सबसे अधिक 162 कीट प्रजातियां क्षति पहुंचाती हैं, जिसमें 12 प्रमुख कीट प्रजातियां सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं और प्रदेश में इससे 25 से 30% तक क्षति हो जाती है। इसकी शुरुआती अवस्था में रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला, डस्की काटन बग, रेड काटन बग प्रमुख हैं। ये वानस्पतिक भागों से रस चूस कर फसलों को कमज़ोर करते हैं। वहीं फसल में फूल कलिका, जिसे डोंडा भी कहते हैं, जिसमें कपास की गुलाबी सूढ़ी, चितकबरी सूढ़ी, अमेरिकन सूढ़ी प्रमुख है, तथा इसके प्रकोप से फल संरचनाएं, कलिका, फूल, फल गिर जाते हैं। कपास की फसल में चितकबरी सूढ़ी का प्रकोप 30-35 दिन की फसल होने पर ही आरंभ हो जाता है। ये पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर आक्रमण करती हैं, जिससे फसल के पौधे मुरझाकर लटक जाते हैं तथा अंततः सूख जाती हैं। प्रारंभ में इसके नियंत्रण न करने पर बाद की अवस्था में नुकसान अधिक हो जाता है तथा इससे फलत संरचनाएं गिर जाती हैं। यदि गोले या डूंडे पौधे में लगे भी रहते हैं तो वह समय से पूर्व परिपक्व ही खिल जाते हैं, जिसकी कपास की गुणवत्ता खराब तथा कम दामों में बाजार में बिकती है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक के आगे के पंख हल्का धानी कलर, जिसमें मध्य में चौड़े हरे रंग की पट्टी पाई जाती है, जिसे एरियाज इंसुलाना, तथा दूसरी प्रजाति के वयस्क पतंगे के ऊपरी पंख पूर्णतः हरे होते हैं, जिसे एरियाज विटिल्ला कहते हैं। इन दोनों प्रजातियों की सूढ़ियाँ भूरे सफ़ेद, सिर व बक्ष हरे काले रंग की होती हैं तथा शरीर पर बहुत से काले व भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं तथा लंबाई 18 से 20 मिलीमीटर होती है। दूसरी सूढ़ी कपास की गुलाबी सूढ़ी है। ये केवल कपास की फसल में कलिकाएं, फूल और फलियों में महीन छेद करके अंदर प्रवेश कर बीजों को खाती रहती है। क्षतिग्रस्त फल संरचनाएं बाद में गिर जाती हैं। यह कपास में सबसे अधिक क्षत पहुंचाती है। इसका पतंगा 8-9 मिलीमीटर लंबा, पंख विस्तार 12 से 15 मिलीमीटर, जिस पर बादामी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मादा कीट का जीवन काल 10 से 15 दिन, जिसमें वो 100 से 500 तक अंडे अलग अलग देती है, जिससे 3-4 दिन में सूढ़ी निकलती है, जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर, पारदर्शी काले सिर वाली होती है। ये सूढ़ी बीजों को खाकर 12-15 दिन में पूर्ण विकसित होकर 13 मिलीमीटर लंबी गुलाबी रंग की हो जाती है। सूढ़ियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण। कपास की फसल में सबसे अधिक क्षत पहुंचाने वाली गुलाबी सूढ़ी एवं चितकबरी सूढ़ी डोंडे में अंदर ही घुसकर खाने वाली होती है। इसके नियंत्रण के लिए सुरक्षात्मक उपाय अधिक कारगर होते हैं। इसके लिए कटाई के बाद फसल अवशेषों को नष्ट कर दें। कपास के आसपास भिंडी या इस तरह की अन्य फसलें न बोएं। फसल की अच्छी मॉनिटरिंग करते रहें। चिड़ियों के बैठने के लिए 5-6 प्रति एकड़ बर्ड परचर या टहनियाँ गाड़ दें। नीमगिरी का 5% का घोल का छिड़काव करें, अथवा नीम आधारित कीटनाशक 1500 ppm, 3000 ppm का 2 मिलीलीटर से लेकर के 5 मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा अन्य कीटनाशक, जिसमें ट्राइजोफास 40% EC की 600 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरोपारीफास 20 EC की 600 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। कपास में सूढ़ियों के अतिरिक्त फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही रस चूसने वाले कीटों से क्षति प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सबसे अधिक क्षति सफ़ेद मक्खी से होती है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। यह पत्ती मरोड़क वायरस का वाहक होती है। ये पत्तियों पर चिपचिपा स्राव करती है, जिसे हनीड्यू कहते हैं, जिस पर बाद में काली फफूंदी दिखाई देती है। सफ़ेद मक्खी के अलावा फसल के रस चूसकर छत पहुंचाने वाला दूसरा कीट है। ये भी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता। पौधे के शीर्ष कोमल भागों में रस चूसता है। यदि इन कोमल भागों को मोबाइल की स्क्रीन या सफ़ेद कागज पर झटक कर देखा जाए तो रेंगते हुए दिखाई देते हैं। इससे पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बढ़वार रुक जाती है। ये पत्तियों की निचली सतह पर रस चूसती है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। कपास की फसल में रस चूसने वाला अन्य

0: ईंट, तेला या जैसिड है। ये हरे रंग का 2 मिलीमीटर आकार का, जिसके अगले पंख में पिछले भाग पर एक एक काला धब्बा होता है। यह पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, छेड़ने पर ये तिरछे भागते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां पहले पीली पड़कर फिर भूरी पड़कर सूख जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कपास में माहू का चेपा का प्रकोप दिखाई देता है। इसे सरसों के माहू की तरह आसानी से पहचाना जा सकता है। ये पौधे के कोमल भागों से रस चूसती हैं, पत्तियां टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। खुली हुई डोंडों पर या रुई पर चिपचिपा पदार्थ गिरता है, जिससे ये काली भूरी हो जाती हैं। रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन एवं नियंत्रण। फसल की बुआई लाइन से 4 फुट तथा पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक यूरिया के प्रयोग से बचें। खेत में खरपतवार नियंत्रण करें, फसल के चारों ओर बाजरा की पंक्तियां लगाएं। खेत में कीटों की मॉनिटरिंग, 5-6 पीला चिपकने वाला एलोस्टिकी ट्रैप लगाएं। कीटों की संख्या अधिक होने पर नीमगिरी का साथ 5% का छिड़काव करें, या नीम आधारित अजाडायरेक्टिन 0.03% की 500 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। रोगार डाइमेथोएट 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। थायोमिथाक्साम 25% घुलनशील चूर्ण 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव यदि प्रारंभिक अवस्था में 40-45 दिन पर पुनः 60-65 दिन पर बदल बदल कर करने से कीटों की संख्या का नियंत्रण बना रहता है तथा फसल क्षति से बच जाती है।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी कृषि विशेषज्ञ सुरेश चंद्र राजपूत की वार्ता, जिसका विषय था कपास की फसल के कीट और उनका नियंत्रण। आशा है कि इस जानकारी को अपनाकर आप अपनी कपास की फसल को कीटों से सुरक्षित रखते हुए बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान साथियों, आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं अंतराल के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हाँ, तो किसान साथियों, चलिए अब बात करते हैं एक नई खोज की। बात करते हैं नई खोज में AI आधारित स्मार्ट खेती की। किसान भाइयों, खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इन्हीं में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट खेती। यह तकनीक किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। पहले किसान मौसम, कीट रोग और सिंचाई का अनुमान अपने अनुभव के आधार पर लगाते थे, लेकिन अब AI तकनीक की मदद से मोबाइल फोन पर ही कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। AI आधारित ऐप और उपकरण खेत की मिट्टी की नमी, तापमान, मौसम की संभावना और फसल की स्थिति का विश्लेषण करके किसानों को सलाह देते हैं कि कब सिंचाई करनी है, कब खाद डालनी है और कब कीट नियंत्रण करना है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये फसल में बीमारी या फिर कीटों के शुरुआती लक्षण की पहचान कर सकती है। किसान भाई यदि फसल की तस्वीर मोबाइल से खींचकर ऐप पर अपलोड करते हैं तो ऐप संभावित रोग या फिर कीट की जानकारी देकर उसके प्रबंधन की सलाह भी देता है ना किसान साथियों, कितनी अच्छी चीज। आज कई स्थानों पर ड्रोन तकनीक को भी AI से जोड़ा जा रहा है। ड्रोन खेतों की निगरानी करके ये बता सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है या फिर किस क्षेत्र में कीटों का प्रकोप अधिक है। इससे दवा और पानी दोनों की ही बचत होती है। किसान साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI तकनीक खेती की लागत कम करने उत्पादन को बढ़ाने और किसान की आय में वृद्धि

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हमारे किसानों को भी तो यही चाहिए। हालांकि इस तकनीक का लाभ उठाने के लिए किसानों को स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं का उपयोग सीखना जरूरी होगा। हालांकि हमारे कुछ किसान तो अब सीख भी चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग समय समय पर इसके लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। तो किसान साथियों, बस कहा जा सकता है कि AI आधारित स्मार्ट खेती कृषि क्षेत्र की एक नई और महत्वपूर्ण खोज है, जो खेती को अधिक वैज्ञानिक, लाभदायक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान साथियों, ये तो बात हुई AI खेती की, अब बात करते हैं तापमान की। तो आपको बता दें कि आगरा जनपद में आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। किसान भाई हमारे मौसम को ध्यान में रखते हुए ही अपने कृषि कार्यों की योजना बनाए। तो किसान साथियों, आप क्या कर सकते हैं, दोपहर के समय सिंचाई और खेत के कार्यों से आपको बचना चाहिए। यदि आपको लगता है कि तेज हवा या बारिश की संभावना है तो कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। कीटनाशक या खरपतवार नाशी का छिड़काव मौसम साफ होने पर ही करें, क्योंकि भाई अगर आप छिड़काव कर देंगे और आंधी आ गई तो आपका छिड़काव बेकार हो जाएगा, आपकी दवाई पैसा सब बेकार हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे कुछ जो किसान हैं वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं, तो हमारे किसानों को अपने खेत, खेती, उसके साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखना है। तो पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था ज़रूर रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये तो हुई मौसम की बात, गर्मी की बात, अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं ये मधुर लोकगीत।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और दिन भर की मेहनत करने के बाद अब अपने घर पहुंच गए होंगे, है ना? तो फिर बताइए इस समय क्या कर रहे हैं आप सब? अपने परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें कर रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ या थोड़ी देर लेटकर पूरे दिन की थकान मिटा रहे हैं? और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त आपके साथ बैठकर वो भी बातें कर रहे हैं, बाहर दोस्तों के साथ खेल रहे हैं या फिर किसी मोबाइल की स्क्रीन में खोए हुए हैं, बताइए। वैसे साथियों, बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा खेलकूद ही तो होता है। बात अगर बचपन की हो रही हो तो हम में से कितनों को अपना बचपन याद आ जाता है, जब शाम होते ही घर से आवाज आती थी कि अरे अब घर भी आओगे कि नहीं, तो हम क्या कहते थे? बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कभी पूरे ही नहीं होते थे और घंटों में बदल जाते थे। कभी कबड्डी खेल रहे, कभी खो खो खेल रहे हैं, कभी गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, रस्सी कूद, तो बस मज़ा आ जाता था खेलते खेलते। और पकड़म पकड़ाई, अरे बाप रे, ये पकड़म पकड़ाई के चक्कर में जो नीचे गिरते थे तो बस पूछिए ही नहीं। ये सारे खेल, जी हाँ, ये सिर्फ खेल ही नहीं थे,

ही हमारी बचपन की सबसे प्यारी यादें थी। इन्हीं खेलों में दोस्ती थी, हंसी थी, शरारती थी और जिंदगी की छोटी-छोटी सीख भी छिपी हुई थी। साथियों, खेल का नाम सुनते ही मुझे ना मेरे बचपन की एक घटना याद आ गई। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं थीं, पर फिलहाल आपको एक घटना के बारे में बताती हूँ। हुआ यूँ कि मैं अपनी सहेलियों के साथ गिट्टी फोड़ खेल रही थी। उसमें आपको पता ही है कि फटाफट उसमें गिट्टियाँ लगानी होती हैं, है ना, ताकि बॉल पड़ने से पहले सारी गिट्टियाँ सेट हो जाए। तो मेरी बारी आई गिट्टियाँ लगाने की। तो मेरी एक सहेली थी, उसने बड़ी जोर से बॉल मेरी तरफ फेंकी जो मेरी पीठ पर जाकर लगी और वहाँ मुझे पहले से ही चोट लगी हुई थी, है ना। उसका निशाना एकदम सटीक बैठा और उसी जगह जहाँ मेरे चोट लगी थी वहीं पर मेरे बॉल लग गई। बाप रे, कसम से आंसू निकल आए मेरे। पर मैं गिट्टियाँ लगाती रही और लगाकर ही मानी और उसके बाद तब उठी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी बारी आई बॉल फेंकने की तो वो मैंने भी अपनी जो सहेली ने मुझे जोर से बॉल मारी थी ना, तो मैंने भी जोर से बॉल मारने के लिए उसकी तरफ फेंकी। तो क्या हुआ, वो जो बॉल थी वो मेरी सहेली को लगने की जगह लग गई एक कुत्ते को, और वो कुत्ता जो था पागल था। बाप रे, वो जो भागा हमारे पीछे और हमने भी दुम दबाकर ऐसी दौड़ लगाई जो सीधा हमारी ब्रेक जाकर घर ही जाके रुकी। आज भी साथियों, जब वो घटना याद आती है तो हंसी नहीं रुकती। पर उस समय को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उस समय ना तो मोबाइल थे ना वीडियो गेम्स थे, फिर भी हमारी खुशियों की कोई कमी नहीं थी। साथियों, यही छोटी छोटी यादें जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए ज़रूरी है हमारे बच्चों का बचपन भी खेल कूद, हंसी और दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों से भरा हो। आज के दिन 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, खेल कूद बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अनुशासन भी सिखाता है। टीम वर्क करना सीखते हैं बच्चे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सो अलग भाई, जब बच्चे मैदान में खेलते हैं ना तो हारना जीतना लगा रहता है, यही सीख आगे चलकर जीवन में उनके काम आती है। पर आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो मोबाइल और टीवी में ज़्यादा समय बिताते हैं और ऐसे में उनको क्या करना है, हमें थोड़ा समय बाहर जाने के लिए भी देना है। भाई, हम तो देते ही हैं पर वो खुद ही नहीं जाते। चाहे वो कोई भी खेल खेलें, हर खेल बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो साथियों, आइए बच्चों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें ऐसा बचपन दें जिससे वो बड़े होकर मुस्कुराते हुए याद कर सके। तो इसी प्यारी सी चर्चा के बाद अब समय है कैसे गीत का, जो हमें बचपन की मस्ती और खेलकूद की यादों को फिर से ताज़ा करवा देगा। आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी हमने आपसे खेलकूद के बारे में ढेर सारी बातें की कि बच्चों का बचपन ही खेलकूद से शुरू होता है और इसी पर निर्भर रहता है। तो क्यों ना आपसे इसी पर आज का प्रश्न ही पूछ लिया जाए। तो आपको बताना ये है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सोचिए, इसका जवाब आपको सोचना है। तब तक चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ साथियों, उनका जन्म 11 जून सन 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था तब उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। साथियों, बिस्मिल जी केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उनकी लिखी पंक्तियां आज भी लोगों में जोश भर देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी अमर पंक्तियां उनके नाम से जुड़ी हुई हैं और आज भी देशभक्ति की मिसाल मानी जाती हैं। सन 1925 में काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मजदूर साथियों, जेल में भी उनका हौसला नहीं टूटा। वो आखिरी समय तक

0: देश की आजादी के लिए समर्पित रहे। 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 30 साल थी। साथियों, उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि देश प्रेम, साहस और सच्चाई के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही उनका जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणादायक मिसाल है। आइए उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, ज्ञान सागर के बाद बारी आती है अब देश दुनिया की, तो फिर चलिए आपको ले चलते हैं खबरों की तरफ। साथियों, 3 तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करेगी। साथ ही जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनको भी इन योजनाओं का लाभ देने की तैयारी है। पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथियों, 3 तलाक या एसिड अटैक से पीड़ित जिन महिलाओं के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिलाओं और उनके परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। दरअसल, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। वहीं 3 तलाक से प्रभावित कई महिलाएं जो होती हैं, वो आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं। तो ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा देकर उनके जीवन को ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, अगली खबर से पहले फिर से लेते हैं एक क्षणिक अंतराल।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, 57,000 गांव होंगे अब डिजिटल। जी हां, प्रदेश के सभी 57,000 गांव पंचायतें अब डिजिटल होंगी। गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेश में डिजिटल सेवा का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 20 लाख परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता तैयार करने और 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के पहले चरण में 21 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। आज के दौर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बुनियादी जरूरत बन चुकी है। इंटरनेट की गति जितनी ज्यादा तेज होगी, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। तो ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम पायदान तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और तकनीकी आधारित रोजगार के नए अवसरों का विस्तार करेगी। साथियों, तो अगली खबर से पहले फिर से लेते हैं एक क्षणिक अंतराल, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की जरूरी खबर। कहीं मत जाइएगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, कश्मीर घाटी और लद्दाख को हर मौसम में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी जोजिला सुरंग परियोजना ने मंगलवार को बड़ी हासिल कर ली है सफलता। सुरंग के अंतिम 2.5 मीटर हिस्से में सफल विस्फोट के साथ दोनों सिरों का संपर्क स्थापित हो गया है। करीब 13 किलोमीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और लगभग 7 मीटर ऊंची ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब द्विमार्गी सड़क सुरंग माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का करीब 85% कार्य पूरा हो चुका है और सुरंग को फरवरी 2028 तक आम लोगों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, परियोजना के कार्यरत जो इंजीनियर्स हैं और जो श्रमिक हैं, उन्होंने ज्यादा ठंड और कठिन परिस्थितियों में काम करने की ये उपलब्धि हासिल की है। सुरंग में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। वैसे इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे 60,000 करोड़ रुपए में पूरा किया जा रहा है, जिससे कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो है ना फायदे का सौदा। तो आइए एक फायदे का सौदा और कर लेते हैं और आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, जो भीषण गर्मी चल रही है उसने टाइफाइड, डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज बढ़ा दिए हैं, जैसे कि तेज बुखार, उल्टी दस्त और सिर दर्द, पैरों में दर्द की परेशानी आ रही है। लोगों का बीपी भी कम हो रहा है क्योंकि गर्मी और धूप की वजह से पसीना ज़्यादा निकलता है, जिससे कि शरीर में ज़रूरी जो नमक और पानी की कमी होने की वजह से बीपी भी कम हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन होता है। सिर दर्द, पैर दर्द के साथ घबराहट होती है। तो साथियों, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं इन बातों का ध्यान रखकर, जैसे कि दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। सुबह देर शाम ज़रूरी कार्य अगर आपको करना है तो कर सकते हैं सुबह शाम। घर से बाहर जाते समय शिकंजी के 2 गिलास पीकर जाएं, साथ में पानी भी लेकर जाएं। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, सिर और कानों को ढकें, चश्मा लगाएं। इसके अलावा बाहर के भोजन से बचें, शाम को तला हुआ भोजन करने से भी बचें, रात को थोड़ा कम भोजन कर लें। छाछ, लस्सी, शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी, ठंडी चीज़ें इस समय अमृत का काम करती हैं, तो इन्हें पीना ना भूलें, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो इस जानकारी के बाद आइए चलते हैं इस गीत की तरफ।

साथियों, अब बारी है आज के प्रश्न का उत्तर देने की। तो आज का प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 29 अगस्त को, वो भी हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: Peace and stability in the region.
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह

0: ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Charles de Ferre.
2: We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost three Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
1: Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, expressed concern over recent incidents involving merchant vessels in the Persian Gulf region and reaffirmed its commitment to the safety and welfare of Indian seafarers. He further informed that today the bitumen tanker MT Jalveer, a Guinea-Bissau flagged vessel, was involved in a maritime security incident near Shinas port in Oman. The vessel had 20 Indian crew members on board. All of them are reported to be safe, and evacuation operations are currently underway. Union Textiles Minister Giriraj Singh today said that India's textile market has grown from about 8.5 lakh crore rupees in 2014-15 to over 16 lakh crore rupees at present. Briefing made

0: Yeah, in New Delhi, on the occasion of 12 years of achievements of the Modi government, Mr. Singh said that the textile sector is the largest employment generating industry in the country after agriculture. The minister highlighted that India's silk production has increased from 26,480 metric tons to 42,005 metric tons, while silk imports have declined by nearly 50%. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to France and Slovakia from 14th to 18th of this month to participate in the upcoming G7 summit. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said this will be a highly productive and wide-ranging visit. He added that the visit spans three destinations in France, Nice, Evian and Paris, and Slovakia. Mr. George said that the visit will provide an opportunity for Prime Minister to engage with world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as well as to the Global South. India has dispatched a consignment of 20,000 doses of measles vaccines and approximately 3 tons of medical supplies to support the government of Maldives in strengthening immunization coverage and safeguarding public health. The External Affairs Ministry said in a statement that this timely assistance will help address increasing cases of measles in Maldives and reinforce the response efforts of the government. UK Defence Secretary John Healey has resigned, accusing the government of being unwilling to commit the resources needed to safeguard the country. In his resignation letter to Prime Minister Keir Starmer, Mr. Healey said the Treasury Department had refused to provide the funding required under the government's defence investment plan, leaving him with no choice but to step down from the cabinet. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with moderate losses of 0.2%. Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while the Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है विविधा कार्यक्रम का। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता आज़ादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद विस्मिल। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभाष शर्मा।
2: शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकी निशा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। भारत की जनता ने ये पंक्तियां अनेकों बार सुनी हैं। ये पंक्तियां हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गरम दल के जाने पहचाने नेता थे। उनके जीवन का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना था। वे उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी थे। वे संयुक्त प्रांत के पहले निवासी थे जिन्होंने भारत माता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में फांसी पे चढ़ के अपनी आहुति दी। काकोरी कांड के वे ही प्रमुख नायक थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 विक्रम संवत 1954 को शाहजहांपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके दादा का नाम था श्री नारायण लाल और पिता का नाम था पंडित मुरलीधर। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राम प्रसाद बाल्यावस्था में अच्छे खिलाड़ी थे। पढ़ने लिखने में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब वे बड़े हुए तो उनका संपर्क आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता सोमदेव जी से हुआ। यही इनके धार्मिक और राजनीतिक गुरु बने। उन्हीं की प्रेरणा से उनमें राष्ट्रभक्ति जागी एवं सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से उनकी बुरी आदतें छूट गईं और पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न हो गई। वे हाई स्कूल ही कर पाए, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और बंगला के वे अच्छे ज्ञाता थे। बिस्मिल के नाम से वे हिंदी व उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। उनकी कविताओं के भाव इन पंक्तियों में देखे जा सकते हैं। दिल फिरा

0: करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहां, देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। 18 वर्ष की अवस्था के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का क्रांतिकारी जीवन प्रारंभ हुआ। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल के दल में शामिल हुए और मैनपुरी षड्यंत्र के केस में फरार रहे। इस दौरान उन्हें घास और पत्तियां खाकर भी रहना पड़ा। सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुरस्कार की घोषणा की, किंतु वो इन्हें पकड़ नहीं पाई। अंत में राज घोषणा के पश्चात वे शाहजहांपुर पुनः लौट आए। अब इन्होंने रेशम का कारखाना खोला और अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ किया। इन्हीं 2-3 वर्षों में रामप्रसाद बिस्मिल ने कैथराइन, मन की लहर और यौगिक साधन इत्यादि पुस्तकों की भी रचना की। असहयोग आंदोलन के मंद पड़ जाने के बाद जब नवयुवकों का गुप्त रूप से संगठन प्रारंभ हुआ तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने सहायता देने का वचन दिया। नवयुवकों का संगठन बन तो गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास धन नहीं था। बेचारे कार्यकर्ताओं को 3-3 दिन तक भोजन प्राप्त नहीं होता था। 1925 ईस्वी में इस क्रांतिकारी दल को किसी महान कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। कई सूत्रों से धन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए, किंतु सफलता नहीं मिली। अंत में रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों से सलाह करके ट्रेन से लखनऊ जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी की अत्यंत अंधेरी रात को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास डाका डाला गया और ये सब क्रांतिकारी लगभग 4,500 रुपया लेकर भाग गए। इसी संबंध में रामप्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। उन्हें गोरखपुर की जेल में रखा गया। मुकदमा चलने के दिनों में सरकार की ओर से बिस्मिल जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। उनसे कहा गया कि यदि वे अपने सभी साथियों के नाम बता दें तो उन्हें सरकार छोड़ देगी एवं बड़ा पुरस्कार देकर इंग्लैंड भेज देगी। इस पर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि पुरस्कार तो क्या, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए मैं स्वर्ग के सुखों को भी ठुकरा सकता हूं। गोरखपुर की जेल में बिस्मिल जी के साथ उनके और भी कई साथी थे। बिस्मिल जी को जब उनके साथियों के साथ जेल से न्यायालय में ले जाया जाता था तो सड़क की दोनों पटरियों पर उनके दर्शन के लिए अपार भीड़ खड़ी रहती थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को सेशन कोर्ट से प्राण दंड मिला। अवध चीफ कोर्ट से भी सजा बहाल रही। श्री रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को प्रातः 6 बजे फांसी देने की तिथि निश्चित की गई। वे रात्रि भर गीता का पाठ करते रहे। प्रातःकाल 3 बजे उठकर उन्होंने अपनी मां को अंतिम पत्र लिखा। इस पत्र में नव युवकों को संबोधित किया गया था और लिखा गया था, यदि किसी के दिल में जोश, उमंग और उत्तेजना उत्पन्न हुई हो तो उन्हें चाहिए कि वे जल्दी से ग्रामों में जाकर किसानों की स्थिति को सुधारें, साधारण जन समूहों को पढ़ाएं, किसी से भी घृणा न करें, सबके साथ प्रेम भाव का बर्ताव करें। फांसी पर जाते समय उन्होंने वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का नारा लगाया और कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में है जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार, तेरी जुस्तजू रहे। इन्हीं बोलों के साथ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हंसते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभा शर्मा की वार्ता। विषय था आजादी के दीवाने पंडित रामप्रसाद

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी। यह कहना है फादर कामिल पुलके का।

0: दानिश कुमार जी को लेकर छोटा भाई है ना, सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोट चोरी है,
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को,
0: वहाँ वहाँ पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहाँ वहाँ पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है,
2: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना
0: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
3: मोदी की अध्यक्षता में हुई
2: कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, पीएल 4 एक्ट जैसा गेहूं, लाल गेहूं जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम

0: पूछते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम
2: को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास सुशासन और जन भागीदारी को विकास के लिए बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक हमारे देशवासियों को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
1: अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए, जब ऑक्सीजन नहीं थी
3: प्रधानमंत्री ऑक्सीजन
1: की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे, जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
4: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
1: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए
5: आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है, यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर

0: दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
1: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
0: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप का सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन

0: मंदिर से, इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासकत्र से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
1: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव के
2: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश की और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। आज हम बात करेंगे भारत के मानसून की। जी हाँ, भारत के लिए मानसून महज बरसात का एक मौसम भर नहीं है। यह अनूठी एवं शक्तिशाली जलवायु प्रणाली देश के लोगों की जीवन रेखा भी है। इस प्रणाली का प्रभाव इस देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर व्यापक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ता है। मानसून की बारिश कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और उत्पादकता एवं खाद्यान्न की कीमतें अच्छे मानसून से भी जुड़ी होती हैं। देश के जल भंडार को फिर से भरने और पनबिजली उत्पादन की दृष्टि से ये बारिश बेहद ही महत्वपूर्ण है। सदियों से भारत का जनजीवन हवाओं के इस मौसमी उलटफेर के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से होते हुए आधुनिक काल की भारतीय कविता, भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकारी, त्योहार, सामाजिक परंपराएं आदि मानसून की चक्रीय लय से प्रतिध्वंदित हैं। अच्छे मानसून का आशय हमेशा आम लोगों की समृद्धि एवं कल्याण से रहा है और खराब मानसून का मतलब संकट से। आगे भी जानेंगे मानसून के बारे में तमाम सारी बातें, लेकिन पहले चलते हैं गीतों के सफर पे और सुनते हैं ये मौसम का प्यार भरा सुगम गीत।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं मानसून की। मानसून शब्द का जन्म अरबी शब्द मौसम से हुआ, जिसका अर्थ है मौसम। यह समुद्र और स्थल भाग के बीच के तापमान में अंतर और उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले दबाव में अंतर के कारण होने वाले हवाओं के मौसमी उलटफेर को दर्शाता है। गर्मियों में स्थल भाग निकटवर्ती समुद्र की तुलना से अधिक तेजी से गर्म होता है। स्थल भाग की सतह पर फैली हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे कम दबाव की स्थिति बनती है। यह समुद्र के ऊपर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ठंडी नमी से भरी हवा को मानसूनी हवाओं के रूप में स्थल भाग की ओर आकर्षित करती है, और जब ये हवाएं स्थल भाग पर पहुंचकर पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं तो व्यापक वर्षा होती है। और सर्दियों में इसका ठीक उल्टा होता है, जब ठंडे स्थलों से हवाएं लौटते हुए मानसून के रूप में समुद्र की ओर बहती हैं। यही है मानसून के संचरण की एक बहुत ही सरल व्याख्या। भारत में प्रत्येक वर्ष दो अलग अलग प्रकार के मानसून होते हैं। ये है दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में बरसात का मुख्य मौसम है। ये देश की अर्थव्यवस्था व इकोलॉजी को जीवन रेखा आप इसे मान सकते हैं। ये खेती को बढ़ावा देता है, नदियों एवं झीलों को भरता है और भूजल के स्तर को बेहतर करता है। भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा इसी मौसम में होता है, और इसी वजह से यह सिंचाई, पेयजल, यहाँ तक कि पनबिजली के जरिए बिजली उत्पादन के लिए भी अहम बन जाता है। इस मौसम की शुरुआत आमतौर पर जून के शुरू में उस समय होती है जब मानसूनी हवाएं केरल पहुंचती हैं। अगले कुछ हफ्तों में ये हवाएं देश भर में फैल जाती हैं। जुलाई के मध्य तक देश का अधिकांश हिस्सा इससे प्रभावित हो जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू होती है क्योंकि गर्मियों में स्थल भाग समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होता है। इससे उत्तरी और मध्य भारत में कम दबाव की स्थिति बनती है, उधर हिंद महासागर ठंडा रहता है, जिससे समुद्र में उच्च दबाव की स्थिति बनती है। नम हवाएं समुद्र से स्थल भाग की ओर बहती हैं और फिर बारिश लाती हैं। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिमी हवा भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं। ये दो शाखाओं में बंट जाती हैं। एक शाखा अरब सागर के किनारे चलती है और पश्चिम तट पर एवं मध्य भारत में बारिश लाती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी को पार करती हुई देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों तक पहुंचती है। जैसे ही ये हवाएं पश्चिमी घाट और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं, ये ऊपर की ओर उठती हैं, ठंडी होती हैं और बारिश कराती हैं। गर्म बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली मानसूनी मौसम प्रणालियां देश के उत्तरी हिस्सों से गुजरते समय भरपूर बारिश लाती हैं। यह मानसून धान, कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस मौसम में देरी या इसकी विफलता खाद्य आपूर्ति, आजीविका और व्यापक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं। आगे आपको बताएंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। पहले सुनते हैं एक गीत।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं मानसून की। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिमी मानसून जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है, अक्टूबर महीने तक उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो जाता है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह छोटी अवधि वाला और कम व्यापक होता है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लिए। अक्टूबर तक समुद्र की तुलना में स्थल भाग तेजी से ठंडी होने लगते हैं। इससे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र और निकटवर्ती समुद्रों पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। हवा के प्रभाव की दिशा उलट जाती है। अब हवाएं स्थल भाग से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इन्हें उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं। चूंकि ये हवाएं दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने से पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए कुछ नमी अपने साथ ले जाती हैं। जैसे ही ये तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पहुंचती हैं, ये बारिश के लिए प्रचुर मात्रा में नमी प्रदान करती हैं। यह बारिश तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद

0: जरूरी है, जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान ज्यादा बारिश नहीं होती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसम की प्रणालियां दक्षिणी प्रायद्वीप में भरपूर बारिश लाती हैं, और यहां पर आपको अब अलनीनो के प्रभाव के बारे में भी बताना बेहद आवश्यक है। अलनीनो जलवायु से जुड़ी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है और भारत सहित दुनिया भर के मौसम के स्वरूप को प्रभावित करती है। ऐसा तब होता है जब दक्षिण अमेरिका के तट पर, विशेष रूप से पेरू के पास, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में गर्म पानी जमा हो जाता है। समुद्र के तापमान में यह वृद्धि दुनिया भर में हवा और बादलों की गतिशीलता को बदल देती है, जिससे हवा के नियमित पैटर्न में गड़बड़ी हो सकती है। भारत में इसके परिणाम स्वरूप अक्सर कमजोर या देरी से होने वाले मानसून के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। अलनीनो वाले वर्ष के दौरान भारत की ओर आने वाली नम हवाओं को सामान्य प्रभाव बाधित हो जाता है। इस बदलाव के कारण जून और सितंबर के बीच होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अतीत में अलनीनो की प्रबल घटनाओं के कारण वर्षा में भारी गिरावट देखी है। मानसून का देर से आगमन प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में सूखे की स्थिति रही है। जोखिम को कम करने हेतु भारतीय मौसम एजेंसियां समुद्र के तापमान और दबाव में आए बदलावों पर भी नजर रखने लगी हैं। पूर्व अनुमान लगाने और पूर्व चेतावनी जारी करने के साथ ही मौसम विभाग इससे किसानों, सरकारों और आपदा रहित एजेंसियों को पहले से तैयार कर देता है कि मानसून की स्थिति अब क्या रहने वाली है। वर्ष 1950 से अब तक 16 अलनीनो वाले वर्ष रहे हैं। इनमें से 7 वर्ष ऐसे रहे जब भारतीय मानसून की वर्षा सामान्य से भी कम रही है। अब बात करते हैं ला नीना और भारतीय मानसून की। ला नीना जलवायु से जुड़ा एक ऐसा प्राकृतिक पैटर्न है जिसके कारण प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से सामान्य से कहीं अधिक ठंडे हो जाते हैं। समुद्र के तापमान में यह बदलाव वैश्विक मौसम को भी प्रभावित करता है, जिसमें भारत का मानसून भी शामिल है। ला नीना वाले वर्षा के दौरान भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यह वर्षा आधारित खेती और जल भंडारण के लिए विशेष रूप से सहायक है। हालांकि अत्यधिक वर्षा कभी कभी बाढ़, फसलों को नुकसान, कुछ इलाकों में पशुधन की हानि का कारण भी बन सकती है। अक्सर भारतीय मानसून को कमजोर करके शुष्क मौसम को जन्म देने वाले अलनीनो के उलट ला नीना आमतौर पर मानसून का मजबूत स्तंभ माना जाता है। जहां अलनीनो गर्म समुद्री जल और कमजोर मानसूनी हवाओं से जुड़ा है, वहीं ला नीना ठंडे पानी और भारत की ओर बहने वाली नमी से लैस तेज हवाओं से संबंधित है। सरल शब्द में अगर कहा जाए तो अलनीनो कम बारिश और अधिक अनिश्चितता पैदा करता है, जबकि ला नीना अक्सर भारी बारिश कराता है। इसके अलावा ला नीना वाले वर्षों में सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सामान्य से कम तापमान भी दर्ज किया जाता है।
1: Let's start the fun!

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे मानसून की। मानसून सिर्फ मौसम का पैटर्न नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़मर्रा के जीवन का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में बीज बोने से लेकर पन बिजली के माध्यम से शहरों को बिजली पहुंचाने तक इसका प्रभाव विशाल और दूरगामी है। बीते कुछ वर्षों में मानसून के पीछे का विज्ञान अधिक सटीक हुआ है, लेकिन इसकी अप्रत्याशित प्रकृति अभी भी हमें मानव गतिविधियों और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। मानसून का अर्थ केवल वर्षा और हवाओं के अध्ययन के बारे में नहीं है, यह इस बात को समझने और जानने के बारे में है कि मौसम लाखों लोगों के जीवन और भविष्य में कितनी निकटता से जुड़ा है। जैसे जैसे भारत विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है, मौसम के अनुकूल रहना, जलवायु के प्रति स्मार्ट बने रहना एक सुरक्षित और अधिक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब समय है एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम शब्द गीत का। आज के कार्यक्रम का जो शब्द है वो है आँखें।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो फिल्में थीं चिराग, आंखियों के झरोके से सागर, द ट्रेन, उमराव जान और सीआईटी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। फिल्म संगीत का कारवाया रुकेगा नहीं, क्योंकि अब समय हो चला है चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म नया दौर से। आवाजें थी आशा भोसले, शमशाद बेगम की। साहिर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना आज़ाद फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत से संवारा था सी रामचंद्र ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी आपने जिस फिल्म का गीत सुना वो फिल्म थी पारस मणि। आवाजें थी लता मंगेशकर कमल बारोत की। असद भोपाली के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म छलिया से। गीत को गाया है मुकेश ने, गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी की तभी आपने सुना फिल्म छलिया से। गीत को गाया था मुकेश ने, गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियु रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं।

0: हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इकतसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बुहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तो

0: वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में एफएम ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसी तर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए एफएम ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ्फुज का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی

अफ्रीका से होगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा आलमी कप होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान तलफ हो गई। उसने अमेरिका के 4 डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Ashley White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी, कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इससे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें,

0: और खास तौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें यह समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे।
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की।
0: जी,
2: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहेंगे जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
0: जी जी,
2: तो भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। एक गांव दूसरे से कम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया।

0: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: न सिर्फ गरीबी से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो, वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
0: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही, दिशा सही है
0: जी,
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहां हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम के देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा।

0: देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगा
1: जी,
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो तीन तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी देते हैं, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: rated very often but deeply valuable quite often is possibly the way forward. Mr. Wadhwa, thank you so much for such lucid and deep insights on the West Asia conflict and its global ramifications. Deeply appreciate your coming on to our program.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on renewed escalation in West Asia, strategic and economic implications for the world. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Gaurav Dhawanlal, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Insights.
4: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय है काव्य गोष्ठी का। काव्य गोष्ठी में सुनते हैं ग्रीष्म गीतांजलि। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर राधे श्याम मिश्र, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा।
5: आकाशवाणी आगरा से आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज हमारे बीच में बहुत ही महनीय हस्ताक्षर यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र गीत के महनीय हस्ताक्षर यहाँ विराजमान हैं, इसके साथ ही डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा वे भी आज हमारे बीच में हैं और मैं स्वयं डॉक्टर राजकुमार रंजन। बहुत श्रेष्ठ काव्य गोष्ठी में श्रेष्ठ हस्ताक्षर हमारे बीच में है। आज की काव्य गोष्ठी का जो शीर्षक है ग्रीष्म गीतांजलि, और क्योंकि ये ग्रीष्म गीतांजलि है, गीत के लिए चार पंक्तियां मैं कहता हूँ कि नाव मझधार बीच खेता है, वह कि जो काव्य का प्रणेता है। नाव मझधार बीच खेता है, वह कि जो काव्य का प्रणेता है, और दर्द के ज्वार जब उठे दिल में तब कहीं गीत जन्म लेता है। तब कहीं गीत जन्म लेता है। ऐसी गीत की कवित्री डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा को मैं बुला रहा हूँ कि भी आए और आज के इस अवसर पर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी,
6: धन्यवाद सर। मैं अपना अभिवादन प्रेषित करती हूँ। एक गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है पीर धरा की। सुनिएगा। तुम

0: कुछ लेकर कुछ जलकन दे जाते हो, तुम अलभ्य अनछुए गगन।
1: बहुत खूब।
0: चिर अभी

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह।
1: और एक बहुत छोटा सा गीत कि नैनों में नीर है, ये सुनिएगा आप
0: जी। स्वागत है।

0: बहुत सुंदर,
1: धन्यवाद।
2: ये थी डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से हृदय की संवेदनाओं को झकझोरा है और श्रोताओं को बांधने का संपूर्ण प्रयास किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और अगले पायदान पर मैं बुलाना चाहता हूँ ऐसे गीतकार को जो अनेक नगरों से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने गीतों की ध्वजा को फहराया है और जिन्होंने अपने गीतों को राष्ट्रपति भवन में भी गाया है, उसको संजोया है, उनको सम्मानित भी किया गया है। तो मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र को आमंत्रण दे रहा हूँ और अपने गीतों के माध्यम से इस संध्या को सुंदर बनाए।
3: सर्वप्रथम आगरा आकाशवाणी के समस्त काव्य प्रेमियों को नमन करता हूँ और एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात शुरुआत करते हैं कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है कि

0: और ये अपना आगरा आकाशवाणी, इसमें ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो एक दो छंद ब्रजभाषा के
1: अवश्य
2: स्वागत।
0: एक छंद है, एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि भूल भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, कि भूल भई हम सो इतनी अखियान।

0: ओ ठगिनी। और एक क्षण ब्रजभाषा को और देख रहे, इसमें एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि गोरी अब न चलो वृंदावन भोरी तुम्हारी लगे मन मूर्ति, कि गोरी अब न चलो वृंदावन भोरी तुम्हारी लगे मन मूर्ति। और संत मनीषी महामुनि ज्ञान न देखत दीठ ठगे मन मूर्ति, कि बारी न बैस तुम्हारी रही, कि बारी न बैस तुम्हारी रही, लख और न काहू रंगे मन मूर्ति। ओ याते सकी चुप ही घर बैठिए काम की ज्वाल जगे मन मूर्ति, याते सकी चुप ही घर बैठिए काम की ज्वाल जगे मन मूर्ति।
1: डॉक्टर राधेश्याम जी ने जिंदगी की हकीकत को अपने गीतों के माध्यम से बयान किया और उन्होंने बहुत सुंदर छंद भी प्रस्तुत किए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और अब मैं ऐसी महान विभूति को आपके सामने ला रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी हमारे बीच में है, कभी आए और आज के इस काव्य पाठ से हम लोगों को कृतार्थ करें। डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी,
2: आप सभी की

0: तू यही
1: वाह
0: ढूंढता तुझको फिरा, कोई कहीं झांक कर देखा नहीं, तू है यही है तू यही। मैंने तो बोझ की गठरी उतार फेंकी है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: मैंने तो बोझ की

0: नहीं मेरा तो तेरे सिवा। और वृद्धावस्था आ गई है तो कहती हूँ, देह कहती थक चुकी हूँ, देह कहती थक चुकी हूँ, चाहती सब छोड़ दूँ। देह कहती थक चुकी हूँ, चाहती सब छोड़ दूँ, सोचता मस्तिष्क सीमाएं सभी मैं तोड़
1: तोड़
0: दूँ,
1: दूँ।
0: सोचता मस्तिष्क सीमाएं सभी मैं तोड़ दूँ, नाप लूँ आकाश बाहों में धरा भर लूँ, नाप लूँ आकाश बाहों में धरा भर लूँ, चल रही जो मन चले वायु का रुख भी मोड़
1: क्या
0: दूँ,
1: बात है, वाह
0: चल
1: वाह,
0: रही जो मन चले वायु का रुख भी मोड़ दूँ।
1: बहुत खूब।
0: और चेहरे पे झलकती हैं आंखों से चमकती हैं,
1: हाँ,
0: चेहरे पे झलकती हैं आंखों से चमकती हैं, सद्भावनाएं अपनी जब दिल से निकलती हैं,
1: वाह,
0: चेहरे पे झलकती हैं आंखों से चमकती हैं, सद्भावनाएं अपनी जब दिल से उभरती हैं, सौंदर्य की कसौटी इंसानियत भरा दिल,
1: हाँ
0: सौंदर्य की कसौटी इंसानियत भरा दिल, बेदम सी झुर्रियाँ भी सोने सी दमकती
1: क्या बात है,
0: हैं,
1: क्या बात, वाह
0: बेदम सी
1: क्या बात,
0: झुर्रियाँ
1: क्या
0: भी
1: बात है,
0: सोने सी दमकती हैं, बेदम सी झुर्रियाँ
1: बहुत
0: भी
1: सुंदर,
0: सोने सी
1: बहुत
0: दमकती
1: खूब,
0: हैं।
1: बहुत खूब।
0: और एक पुराना गीत

दल घने, अनिल भाई सुने, छा रहे उर गगन में है बादल घने, चिर प्रतीक्षा बनी आज सौदामिनी, चित्रलेखा बनी मन की पावन धरा, बीज पाकर अभीप्सित

0: पुतलियां चल रही इस तरह जो चली जा रही, मत गजगामिनी
1: वाह
0: छा रहे उर गगन में है बादल घने, चिर प्रतीक्षा बनी आज सौदामिनी। और अंतिम है, चंद्रिका चांद को देख इतरा उठी, दृश्य यह देख कर रह गया नभु ठगा, सिंधु की उर्मियां भी मचलने लगी, पूर्णिमा

0: लगा, नृत्य करने लगी है दिशाएं सभी, सृष्टि मानो बनी मुग्ध ध्रुव स्वामिनी, सृष्टि मानो बनी मुग्ध ध्रुव स्वामिनी, छा रहे उर गगन में है बादल घने, चिर प्रतीक्षा बनी आज सौदामिनी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह।
2: डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी से बहुत सुंदर सुंदर गीत आप लोगों ने सुने। अब हम देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन जी को आत्म प्रकाश शुक्ल की चार पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं कि भक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, भक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे कुछ और नजर आएंगे, डूब के हमको सुनोगे तो हम रफ्तार रफ्तार, डूब के हमको सुनोगे तो हम रफ्तार रफ्तार, कान से हो के कलेजे में उतर जाएंगे। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी को सुनिए, स्वागत।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी, उस महान गीतकार को आपने यहाँ ला दिया, डॉक्टर आत्मप्रकाश शुक्ल जी को। और मैं चार पंक्तियों के माध्यम से गोष्ठी में शिरकत कर रहा हूँ। एक गांव से हम

गर्जन तर्जन का स्वर हो, कभी न घबराहट उर गूंजी, सदा रहा मुख भास्वर हो। कभी न घबराहट उर गूंजी, सदा रहा मुख भास्वर हो। तो तन से मन से जीने वाले, तन से मन से जीने वाले हम जीवंत दुलारे हैं, जिन राह

0: ही
1: बहुत
0: सितारे है,
1: बहुत सुंदर
0: और प्रेम भाव को
1: जी
0: सर्वोपरि माना गया है। तो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आकाशवाणी आगरा पर ये पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। ये प्रेम पंथ के हम अनुयायी, प्रेम पंथ के हम अनुयायी, इससे तीर्थ नहीं बढ़कर। प्रेम पंथ के हम अनुयायी, इससे तीर्थ नहीं बढ़कर। ओ किया हिमालय सा सिर ऊंचा, पाया स्थान वहीं चढ़कर। किया
1: वाह
0: हिमालय सा सिर
1: बहुत सुंदर
0: ऊंचा, पाया स्थान वहीं चढ़कर। संबंधों के महानिलय में हमने पूजा पाठ किया, संबंधों के महा

चले वहां के हम ही रहे सितारे हैं। अरे इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, ये माता पिता बहन हो भाई सब संबंध निभाए हैं, माता पिता बहन हो भाई सब संबंध निभाए हैं, और जीवन की नदिया में बहकर हाँ हिच को ले खाए हैं, जीवन की नदिया में बहकर हाँ हिच को ले खाए हैं। तो हम न रहे परतंत्र, सदा ही स्वतंत्रता के हामी हैं, हम न रहे परतंत्र, सदा ही स्वतंत्रता के हामी हैं, आराधक हैं हम समता के।

कांटे हैं पांव में, अरे सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी। और ये पंक्तियां हैं, ये ज्यादातर वृक्ष यहाँ नागफनी वाले हैं, ज्यादातर वृक्ष यहाँ नागफनी वाले हैं, और बचे खुचे जिंदा पर अमर बेल पाले हैं, अरे उन पर भी कौओं का खूब बोलबाला है, और डाल डाल पीत हुई

0: को हुक दबी, पंक्तियां सुनेगा
1: स्वागत
0: राधे श्याम जी,
1: जी जी स्वागत।
0: कोयल की कुहक दबी, अरे कोयल की कुहक दबी, कौओं की कांव में सबको है नजर लगी, मेरे इस गांव में सबको है नजर लगी, ये दीमक है चाट रही पौधों नवजातों को, दीमक है चाट रही पौधों नवजातों को, और सुखा रही जड़ समेत हरियाए पातों को, ए बाबी की तलहट में नागराज लेटे हैं, अरे बाबी की तलहट में नागराज लेटे हैं, कुछ उनके सेवक हैं, कुछ उनके बेटे हैं, कुछ उनके सेवक हैं, कुछ उनके बेटे हैं, तो अब न यहाँ शीतलता, अरे अब न यहाँ शीतलता, पेड़ों की छांव में सबको है नजर लगी, मेरे इस गांव में सबको है नजर लगी। और अंतिम पंक्तियां, ये कुछ तो अफवाहों के ठेके पर पलते हैं, और जो उन्हें बुझाते हैं उनसे ये जलते हैं, तो गिरगिट

0: तो बात अलग फंस जाते, रे बात अलग फंस जाते, अपने ही दांव में सबको है नजर
1: बहुत
0: लगी
1: बहुत बहुत
0: मेरे।

0: बहुत सुंदर,
1: सबको
0: क्या
1: है
0: बात किए हो,
1: नजर
0: बहुत
1: लगी।
0: सुंदर,
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: सुंदर।
1: और इस गोष्ठी में जो भाग ले रहे थे उनमें थी डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, डॉक्टर ज्योत्ना शर्मा और मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन।
2: अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गीतांजलि। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। संचालन कर रहे थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। अब समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शुभ्रा तलेगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन।

राग सरस्वती में ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर

बीस ग्लो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रातःकालीन सभा में 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।